वो निहाल हो गया और दुष्टों को निहाल करने वाला बन गया। अंतिम समय सुधर जाए ये खास बात है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे आपकी भूमिका बढ़नी चाहिए अध्यात्म की। आप खिलवाड़ में मत अपने जीवन को नष्ट कीजिए। यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न मुद्रा में आप निश्चय करो मुझे केवल प्रियालाल चाहिए। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करता है, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, तनिक भी संदेह नहीं है। जो अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो श्री भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हमें पता नहीं हमारा कब अंतिम समय है, तो एक एक क्षण निरंतर अंतर रहित तैल धारावत भगवन नाम भगवत स्वरूप मंत्र प्रभु की लीला गुणों के चिंतन में व्यतीत करना है। पता नहीं कौन सा क्षण अंत हो, हमारी बाजी हार जाएगी अगर हम अंतर बना लेंगे। यही बड़ी हानि होगी, यही बड़ी विपत्ति होगी, यही सबसे बड़ा चूक होगी जिसकी कई जन्मों में भी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। एक क्षण भी अंतर न पड़े, राधा राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमारी जिभ्या पर नाम चलता रहे। अगर कहीं किसी का शरीर छूट रहा है और भगवत प्रेरणा से कोई भगवत नाम जापक पहुंच जाए, उसको नाम कीर्तन सुना दे, उसको भगवान की चर्चा सुना दे, वहां बैठ करके थोड़ी देर मंत्र जप ले, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है जो शरीर छोड़ने वाला है। कितनी बड़ी महिमा है, अगर वो जीवन में स्वयं ये कर ले तो जरूरत ही नहीं किसी की, ये जीवन ही इसीलिए मिला है। पर अगर कहीं दुर्भाग्यवश उसने भजन नहीं किया और उसको ऐसा संग मिल जाए, कोई भजन करने वाला अंतिम समय उसके समीप, ये बिना भगवान की हेतु की कृपा के नहीं हो सकता। भगवत पार्षद ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे उनके पास, हेतु की कृपालु श्री हरि उस पर रीझ जाए तो ऐसा संयोग बन सकता है। कोई भगवत चर्चा सुना दे, भगवान नाम कीर्तन सुना दे, या वहां समीप बैठकर उसके पास मंत्र जप कर ले, उस वैष्णव उस भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से उस वातावरण में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। या अंतकाल में ऐसी कोई भयंकर भयावह स्थिति हो और वो अभी मूर्छा को प्राप्त नहीं हुआ, उसको ये याद आ जाए कि इस समय तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि ऐसी याद आ जाए उसको, प्रभु की स्मृति एन केन प्रकारेण भी हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाए। ऐसे किसी जीव का शरीर छूट गया है और उसको कोई भगवत प्रेमी महात्मा देख ले मुर्दे को, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसके शरीर के समीप पहुंच करके उसे छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसकी चिता लगाई जा रही हो उसे देख ले, या उसकी अस्थि राख आदि भी पड़ी हो उसको भी छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महापातक युक्तावा, एक कोई जवानी शब्द नहीं, केवल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा कलेवरम वा तदभस्म तद्धूमम, उसके शरीर को छू दे, मर गया है पर
या उसका धुआं देख करके अच्छा चिता जलाई जा रही, भगवत स्मरण करते हुए देख उसका कल्याण हो गया, या तद भस्म उसकी जली हुई चिता की जो राख पड़ी है छू जाए, पैर में छू जाए, वो हाथ से ऐसे छू ले या उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान की भगवत प्रेममयी वृत्ति का कैसा महत्व है, देख ले छू ले उस जीव को मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा, वो आवागमन में नहीं जाएगा। जब ऐसी महिमा नाम जापक की है तो आप सोचो वो नाम क्या आप नहीं जप सकते हैं। अरे ऐसा सौभाग्य मिला है, चूको मत, किसी की मत सुनो, राधा राधा राधा, बड़ा घाटा हो जाएगा यदि चूक गए, अन्य किसी साधन की तरफ दृष्टि मत डालो। कलिकाल में अन्य कोई साधना सिद्ध हो जाए बड़ा कठिन है। जैसे योग मार्ग है, इसकी नींव है ब्रह्मचर्य, कई कई घंटे आसनों पर सुदृढ़ भाव से बैठ करके चित्त वृत्ति को परमात्म स्वरूप मिला बड़ा कठिन है। आहार संयम वातावरण ये सब यज्ञ आदि के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, तपस्या आदि के द्वारा बड़ा कठिन है। प्रकृति का थोड़ा भी प्रतिकूल व्यवहार शरीर सहने की क्षमता नहीं रह गई, बहुत ही कमजोर शरीर हो रहे हैं, कैसे आप तपस्या कर सकते हैं? धर्म क्या है इसका परिचय ही भूल गए हैं, कैसे कोई भगवत मार्ग में जो अन्य साधन है उन पर चल सके? एक उपाय बचा है, चाहे जैसे हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नाम जप। इसके उदाहरण में प्रसंग चल रहा था अजामिल जी का, ना तो ब्रह्मचर्य रह गया, ना पवित्रता रह गई, ना धर्म रह गया, और अभक्ष पदार्थ खाते थे, मांस आदि, मदिरा आदि, घोर वैश्यागामी, कहीं भी कोई भी ऐसा अब नहीं रह गया था इनके पास कि जिससे इनको परम कल्याण की तो बात जाने दो, किसी तरह नरक से बचाया जा सके, कोई उपाय नहीं रह गया था। यही है भगवान की हेतु की कृपा, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाहिए। भगवान जब जिस पर प्रसन्न होते हैं तो संत संग प्रदान करते, संतों से अपनापन हो जाता है, ऐसा अपनापन कि वो फिर उनके बिना जी नहीं सकता, भगवत चर्चा के बिना जी नहीं सकता, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के बिना नहीं जी सकता। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, अगर संतों से बिछुड़ना पड़े तो ऐसा कष्ट होना चाहिए मानो हमारे प्राण छूट रहे हैं, ये भगवत कृपा। बिना श्रद्धा के भी संत संग कल्याण कर देता है, कर दिया अजामिल का, अपने पुत्र का नाम नारायण रखना आप जो हो, पुत्र मोह में नारायण पुकारा, भगवान श्री हरि के दिव्य पार्षद उसी क्षण प्रकट होकर के यम पाश से उन्हें मुक्त किया अजामिल को, यम दूतों को, तुम धर्म की वृत्ति को जानते हो, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं? पर यहां धर्म का लेश नहीं दिखाई दे रहा, तुम तो निरपराध को दंड दे रहे हो। पूरा प्रसंग आपने सुना, हरि पार्षदों ने भागवत धर्म का निरूपण किया, किसने कोटि कोटि जन्मों का प्रायश्चित कर लिया, पुत्र के ब्याज से ही सही, पर इसने हमारे स्वामी श्री हरि के नारायण नाम का उच्चारण किया। अजामिल के हृदय में आया कि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, तो इन महान दुर्लभ भगवत पार्षदों के दर्शन, यम पाश से मुक्ति, यदि मुझे कुछ भी समय अब दे दिया जाए तो मैं पूरे चित्त से नाम को जपूं, नाम मैं हो जाऊं, ऐसा प्रार्थना करना चाहते थे, पर बोलने का अवसर नहीं दिया भगवत पार्षदों ने, अंतर्धान हो गए।
यद्यपि मैं इस जन्म में महापापी हूं, फिर भी मेरे ऊपर संतों की कृपा है। यह हेतु की कृपाल संत, अगर उन्होंने मुझे बालक का नाम नारायण रखने को न कहता, कहते तो हमारा आज इस सौभाग्य न होता। कहां मैं कुलटागामी अपवित्र और कहां भगवान का सर्व पाप नाशक मनोमोहक नाम। ये तो केवल संत कृपा। हाय मैं महाकपटी पापी निर्लज्ज ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, पर मैं कृपा पात्र हो गया, तभी मेरी जिभ्या से ये नाम निकला। आज से मैं दृढ़ निश्चय करता हूं ये संत संग का फल है। सबको ऐसा ही दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अब मेरा जितना भी समय है, मन इंद्रियों के अधीन ना होकर प्राणों को वशीभूत करके मैं ऐसा भजन करूंगा कि एक क्षण भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। देखो निश्चय में ताकत है, निश्चय में करते करते ऐसा निश्चय होगा तो ऐसा भी होगा, अगर आज ही निश्चय तो ऐसा भी होगा। जैसा सोचना है वैसा तुम अभी अभी निश्चय करो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे आगे का जीवन होगा। जैसा जीवन तुम चाहते हो सुखमय शांतिमय, वो केवल तुम्हारी सोच होगी, सोच से ही वो जीवन बनेगा। और जैसी सोच करनी अभी निश्चय करो। यदि भोगों का चिंतन, भोग भोगों की क्रियाएं, नाना प्रकार का छल कपट, तो दुर्गति अशांति क्लेश विषाद, क्या चाहिए तुम्हें? शांति सुख आनंद, तो निश्चय करो। अजामिल जी निश्चय करते हैं, आप मेरे को जो समय मिलेगा मन और इंद्रियों की गुलामी नहीं करूंगा। अब लो निशानी अब नाम से हो, जितनी श्वास है अब बहुत सावधानी पूर्वक नाम जप करते हुए व्यतीत करूंगा। ये बड़ी बात। अब ये वासनाएं मुझे फंसा नहीं सकती। क्या हो गया? निश्चय हो गया। तुम्हारा निश्चय ढुलमुल होता है, आज नहीं करूंगा, फिर वही जहां वेग आया फिर उसी में प्राण निकल जाए, नहीं आज्ञा के विपरीत कदम नहीं, अभी महात्मा बन जाओगे। महात्मा आंतरिक स्थिति होती है। भगवान की इस माया ने मुझ अधम को कैसा फंसा लिया, बहुत ही नाच नचाया, अब नहीं नचा पाएगी। ये क्यों? क्योंकि आप समर्थ बल मिल गया नाम का, अब नहीं नचा पाएगी। प्रहलाद जी भगवान श्री नरसिंह देव से कहते हैं, मुझे आपकी माया से कोई भय नहीं, आपका चरणामृत और आपका नाम जाप करके, आपकी लीला कथा का गायन और श्रवण करके मैं इस दुस्तर माया को पार कर जाऊंगा। मुझे भय है तो इन प्राणियों को जो आपके नाम से आपकी लीला कथा से दूर हैं और माया प्रपंच में रत हैं, प्रभु इन पर कृपा कर दीजिए, अब मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी कृपा हम पर हो गई है, हमें नाम मिल गया है, आपका चरणामृत मिलता है, आपकी लीला कथा, इससे बढ़कर भगवत कृपा और क्या होगी। प्रभु कृपा चाहिए इन प्राणियों को। भगवान नाम का निरंतर रटन करते हुए अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। नियम लो अब व्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए। राधा राधा, हर सेकेंड सार्थक करो, कोई भी सेकेंड खाली न जाने पावे, यही चतुरता है। राम ही भजे ते चतुर नर, बेईमानी करना, छल कपट करना, इंद्रियों की गुलामी करना, यह चतुरता नहीं है। चतुरता है जो तुम्हें समय मिला है उसमें नाम रूपी धन। एक बार बोला राधा, जमा हो गया श्री कृष्ण की बैंक में, कभी इसका विनाश नहीं हो सकता, और ये ब्याज सहित आपको मिलेगा, महासुख मिलेगा। सोचो एक नाम त्रिलोक तारे, ऐसे नाम को हम क्यों छोड़ेंगे? हर समय नाम जप करेंगे, पता नहीं कौन सा अंतिम समय हो, क्योंकि अंतिम समय राधा नाम स्मरण हुआ तो हम पहुंच जाएंगे किशोरी जी के चरणों के समीप।
अजामिल के चित्त में संसार से घोर वैराग्य हो गया। अब वो हरिद्वार गंगा के किनारे बैठ करके शांत भाव से अपने चित्त को भगवान के नाम में लगा दिया। भुवन नाम में लगाते ही मन शांत, बुद्धि शांत, निर्मल हो गई। क्योंकि निश्चय बड़े जोर का हो गया ना, ये निश्चय जोर का हुआ भगवत पार्षदों के दर्शन से। भगवान के एक नाम उच्चारण मात्र से उसकी कैसी महान सदगति हुई। सद्यो विमुक्तो भगवन नाम ग्रहण, देखो भगवान के नाम का उच्चारण का फल। नाम ने ही तो सब बात बना दी। वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं। नाम जप करो अलग एकदम दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। देखो ना अजामिल को कैसे अनुभव हुआ स्वरूप का। नाम जप करो सब हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। अलग से करोगे तो विक्षेप हो जाएगा, क्योंकि सोहम और दासोहम का मार्ग ऐसे है। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा। और दासोहम में करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आंख मूंद के दौड़ो वात्सल समुद्र हरि तुम्हें ऐसे घेरे हुए गिर भी नहीं सकते। वहां परत खगेश लगे नहीं बारा, ज्ञान के मार्ग में गिरने में देर नहीं लगती। और बचाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि तुम खुद ब्रह्म हो, बचो माया से। सत्यो भी मुक्त हो, देखो ना एक नाम ने सत्य माने तत्काल काम बना दिया। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम, हा हा

रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। एक कर्म बंधनों का नाश कर देना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है वो ध्यान से सुन ले, अपने श्री चरणों के स्पर्श से तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले प्रभु के जो जन हैं उनका संग तीर्थपाद श्री हरि के नाम से प्रीति कराता है। बिना संग के नाम में न परिचय होगा न प्रीति होगी, भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुव नेम। प्रभु से प्रार्थना करे, हे दीन बंधु दया करके नाम जापक संतों का संग दे दीजिए, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य दे दीजिए। जिसको संत संग मिल गया और नाम की महिमा सुनने को मिली, नाम जपने का उत्साह मिला, इससे बढ़कर और कोई साधना नहीं है। नाम का आश्रय लेने से नयत पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। आहा, कोई भी कर्म दलदल से फंसा नहीं पाएगा। कर्म को दलदल की तरह कहा गया, जैसे दलदल में गिर जाए तो निकलना असंभव। नाम का आश्रय ले लो, दलदल ही नहीं रहेगा, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंध सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। न नौका की जरूरत है न तैरने की जरूरत है, राधा सूख ही जाएगा, समुद्र ही सूख जाएगा। आराम से चलो, प्रभु के नाम के अतिरिक्त और ऐसी किसी साधना में सामर्थ्य नहीं है। बैठा लो हृदय में, दौड़ भाग बंद करो, चाहे और कोई साधना करो, रजोगुण और तमोगुण अपना प्रभाव दिखाता रहेगा, पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं होगा। रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। एकमात्र नाम ऐसा है कि रजोगुण तमोगुण का नाश करके सात्विक विकास करके त्रिगुणातीत स्थिति प्रदान कर दे। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस स्वरूप का बोध करने के लिए बड़ी कठिन साधनाएं बताई गई, नाम जब से सहज में। कोई भी ऐसा, अभी पीछे एक दिन स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें लिखा था कि कुंडलनी जागृत और सुषुम्ना नाड़ी का खुलना ये बहुत कठिन। गोपाल शास्त्र नाम में भी सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती मानो ब्रह्माकार वृत्ति, ये नाम से स्वाभाविक हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती। कुंडलनी के जागरण में जो बड़े बड़े विघ्न है, नाम जप को पता भी नहीं चलता, वो जागृत हो जाती है। सुषुम्ना मार्ग अपने आप संचरित हो जाता है, कुछ उसको इन सब विषयों को न पढ़ने की जरूरत है न कुछ करने की जरूरत है। राधा राधा राधा, हर समय नाम जप, सब सिद्धियां सब वैभव भगवान के ही तो नाम में छुपा हुआ है। परिचित, ये जो हमने तुम्हें बताया ये गोपनीय है। गोपनीय शब्द इसलिए कहा कि सब नाम पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। रोज चर्चा होती क्या आपका निरंतर नाम जपने में भाव बना, नहीं। कोई बिरला ऐसा जिसके ये बात हृदय में बैठ जाए कि वो मुझे तो बहुत बड़ी बात मिल गई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई। छोटा न समझो नाम को, इतना बड़ा अंकुश होता है और विशाल मत वाले गजराज को घुटनों के बल लाने के लिए पर्याप्त है। एक अंकुश मारे घुटने टेक देगा, जैसा कहेगा महावत वैसे चलना पड़ेगा। ये नाम अंकुश है, ये काल को भी घुटने में ले आवे ऐसा अंकुश है नाम। देखने को लगता है राधा, देखने को लगता है कृष्ण, मत वाले काल को भी अधीन कर, समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। जिए काल वश ना पड़े, जीवित है लेकिन काल के अधीन नहीं, ये नाम का चमत्कार है। विश्वास मानो,
जल में घर्षण शक्ति से बिजली पैदा हो जाती है। नाम जिभ्या पे चलेगा तो ऐसी बिजली पैदा होगी कि लोक लोकांतर में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। पर करो ना, नाम जप करो, जिभ्या से निरंतर नाम रटो, मारे घूम रहे दुख निवृत्ति के लिए, कुछ नहीं होना। यदि नाम नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ओस चाटने से थोड़ा तो गीलापन लगा, लेकिन प्यास नहीं बुझने। ये प्रभु के चरणारविंद की शीतल धारा भक्ति की छोड़कर, नाम की छोड़कर के अन्य साधन रूपी ओस कण चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। राम राम राम जीह जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद सताई है। गोस्वामी जी ने महामहिम नाम की महिमा प्रकट की। कहीं भी भाग के जा तू कहां जाएगा, कोई तेरा दुख निवृत्ति का उपाय नहीं, क्योंकि जिससे तू दुख निवृत्ति चाहता वो भी काल से तो भयभीत ही है। जो काल को भयभीत कर दे वो है भगवान नाम। ले लो प्रभु के नाम का आश्रय, ले लो प्रभु के नाम का निरंतर जप करो। जो पुरुष श्रद्धा और विश्वास पूर्वक के बात सुने और इसे जीवन में उतारे, तो चाहे जितने पातक हो गए उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। ये नाम ही समस्त पातकों का नाश करके भगवत प्राप्त

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी. काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं. श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है. काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है. इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है. इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो.

0: जिस वक्त आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी के विचार।
1: खुश कैसे रहते हैं? क्या सक्सेस से खुश रहते हैं? बहुत सक्सेसफुल लोगों को आपने देखा होगा, जानते होंगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, क्या वो बहुत खुश है? पूरी तरह से अंदर से खुशी से भरे हुए, झूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लाइफ के एक मोमेंट को मजे से जी रहे हैं, या उनकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, आपकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स है? जबकि आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखोगे जो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है वो बहुत बेटर है उनसे जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। जैसे किसी कंपनी में जो जितना ऊपर बैठा है उसके ऊपर उतना ही प्रेशर भी है, उतनी ही टेंशन भी है।
2: सक्सेस इज नॉट
1: हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज सक्सेस। बट क्या हमको पता है कि खुश कैसे रहते हैं? कैन वी बी हैप्पी बाय प्रैक्टिस? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना, नहीं, डोंट से यस और नो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इन्होंने कहा कि भाई प्रैक्टिस से हम खुश हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस से खुश नहीं हो सकते, तो आप मेरी साइड ले रहे हो, इनकी नहीं ले रहे हो। डोंट डू दैट। आप समझ रहे हो ना, मैसे ही करते हैं ना अपने माइंड में, वी से यस और नो, बट सेइंग यस और नो इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द थिंग इज कि हमको एक्चुअल में देखना है कि हम खुश कैसे हो रहे हैं, या ये पूरी दुनिया खुश कैसे हो रही है। इसको इस तरह से कहूं कि दिस डिजायर इज चॉइसलेस, यहां पर कोई चॉइस नहीं है। जैसे होता है ना कि आपको लाल रंग की शर्ट अच्छी लगती है या हरी रंग की, तो वहां पर चॉइस है ना। क्या यहां पर चॉइस है कि आपको खुशी अच्छी लगती है या दुख अच्छा लगता है, मजा अच्छा लगता है या दर्द अच्छा लगता है? कोई चॉइस है क्या यहां पे? कोई कहेगा मुझे दर्द अच्छा लगता है? नहीं, चॉइस नहीं है, दुख अच्छा नहीं लगता है, है ना। तो दिस इज चॉइसलेस। तो दैट मींस कि पूरी दुनिया, हर इंसान इंक्लूडिंग यू एंड मी, अपने इसी डिजायर को पूरा करने में लगा हुआ है अलग अलग तरीके से, खुश होने का डिजायर। तो हमको सिर्फ इतना सा समझना है कि पूरी दुनिया कैसे एक्ट कर रही है, और क्या कोई दूसरा भी रास्ता है? मैं कहता हूं हाँ है, ठीक है, जो इस दुनिया की सोच से परे है। वहां तक चलने के लिए पहले आपको अपनी सोच को छोड़ना होगा, क्योंकि मैं अगर कह रहा हूं सोच से परे है तो वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअल में वो सोच से परे है। आई एम 100% श्योर आप में से कोई भी आज से पहले किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। तो अब अगर आपको उस पॉइंट को ग्रैस्प करना है पूरी तरह से, तो जो भी कुछ माइंड में है उस सबको छोड़ना होगा कुछ देर के लिए। क्या आप तैयार हो जो भी कुछ है माइंड में उसको छोड़ने के लिए? फिर उसके बाद देख लेना कि हो सकता है जो मैं कह रहा हूं बकवास हो, तो उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाल देना, और जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हो वैसे करते रहना, जैसे पूरी दुनिया कर रही है खुश होने की स्ट्रगल। और क्या है बचपन से आज तक अगर देखा जाए, आपकी लाइफ को अगर समअप किया जाए, और क्या है खुश होने की स्ट्रगल? वी नीड डिजायरेबल थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस रिलेटेड टू समथिंग। वो चीज है, उसका थॉट हमको खुशी नहीं देता है। डिजायरेबल थॉट क्या है? कि ये चीज मेरी होनी चाहिए, वो हमको खुशी देता है। कोई पर्सन है, उसके साथ में हमारा रिलेशन है, समवन। जब रिलेशन अच्छा होता है तो हमको खुशी मिलती है। ये रिलेशन अच्छा एक्चुअल में क्या है? क्या एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे कोई रिलेशन होता है या माइंड के लेवल पे होता है? हाँ, इसको दोनों चीजों को अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इसमें सारे थॉट्स आ गए। अभी जहां हम खुशी ढूंढ रहे हैं वो थॉट्स में ढूंढ रहे हैं। मैं थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इसको भी क्लब करके एक वर्ड दे रहा हूं, थॉट्स। एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हमारा किसी भी चीज से कोई रिलेशन नहीं होता है। आपका पैसे से क्या रिलेशन है एक्चुअल में एट अ फिजिकल लेवल? क्या आप उससे जुड़े हुए हो किसी चीज के साथ में? मतलब जैसे जमीन है, तो एक्चुअल में आपको जमीन से क्या रिलेशन है? क्या वो जमीन आपकी है? इस सच को देख पा रहे हो? पेपर पे आपकी है, आपके माइंड में आपकी है, क्या एक्चुअल में आपकी है? ना आपकी है, ना आपके बाप की है। ये बात समझ आ रही है? ये बात किसी की नहीं है। वो जमीन किसकी है? नेचर की है। मान लो तो किसी पार्क में भी आप जाकर के बैठ सकते हो, ये पार्क मेरा है कि नहीं? तो पार्क आपका हो गया अगर एक्चुअल में आपने मान लिया तो। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ। और ये मान लिया कि मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे पास में अपना घर नहीं है, तो अब गरीब हो। तो ये सारा खेल माइंड के लेवल पे चल रहा है, एक्चुअल में कहीं भी नहीं है। मान ही तो रहे हो, ये आसमान मेरा है, ये तारे मेरे हैं, ये बादल मेरा है, ये बारिश मेरी है, ये नेचर किसके लिए है, इसका मीनिंग क्या है? अगर इसको कोई देखने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, इस नेचर की क्या वैल्यू है? अगर यहां पर कोई है ही नहीं, इस प्लैनेट पे अगर लाइफ नहीं है, तो इस सबका मतलब क्या है? तो मानने के ऊपर है ना कि सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, लेकिन हम ऐसे कभी सोचते नहीं है। हम क्या करते हैं, छोटा छोटा सोच, बस मैं ये कपड़े मेरे, ये छोटी अलमारी मेरी, ये छोटा सा ये साइकिल मेरी, ये स्कूटर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये घर मेरा, बस वहीं पर उलझे रह जाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, है कि नहीं? तो हमारी दौड़ क्या है, इसको आराम से समझना, बिकॉज है ना, कहीं भी ये मत समझ लेना कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि पैसे की वैल्यू नहीं है, पैसे की बहुत वैल्यू है, ठीक है ना, मतलब वहां से कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आपको मिलता है और कंफर्ट की वैल्यू है, बट उसका खुशी से कनेक्शन नहीं है। खुशी का कनेक्शन किसी और चीज से है, राइट अंडरस्टैंडिंग से है। हम कैसे खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हम कहीं जुड़ते नहीं है ना चीजों के साथ में, ना लोगों के साथ में, बस अपने माइंड में जुड़ जाते हैं। जैसे आप किसी पर्सन के साथ में जुड़ गए तो जुड़ने में खुशी नहीं मिलती है, जुड़ने के बाद में जैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ओन लिमिटेड डिजायर्स, जब वो हो रहा होता है तब हम खुश होते हैं, उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, एकदम से मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, सब बेकार है, घर भी बेकार है, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, मन करता है, नहीं करता है, बहुत गुस्सा आ जाता है अंदर से, मतलब जितना मजा आया था उतना उससे बहुत ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि इस थॉट में मजा आता है, नो डाउट देयर इज प्लेजर इन दिस थॉट, जब हमारे अकॉर्डिंग कुछ हो रहा होता है तो मजा आता है, आता है नहीं आता है कि कोई पर्सन हमारे अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, मजा आता है, जैसा हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, सक्सेस मिल रही है, मजा आता है, जैसे ही हमारे अकॉर्डिंग कुछ होना बंद हो जाता है, आप एक बिजनेस कर रहे हो जब तक आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही आपके अकॉर्डिंग होना बंद हो जाता है, आपके इंप्लॉइज ने कुछ ऐसा किया जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर धीरे धीरे आप देखोगे उसके अंदर कड़वाहट आने लग जाएगी, जिसके अंदर जितनी ज्यादा कड़वाहट आ गई समझ जाओ खुशी से उतना ही दूर है, जी रहा है, जिंदा लाश है। ये एक प्रॉब्लम है थॉट के लेवल पे खुश होने में। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपने इस थॉट को पकड़ा है जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हो कि मैं उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूं, जिस इंसान को मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं, इसकी वजह से आप खुश हो रहे हो, तो क्या इसका अपोजिट थॉट यानी कि ये रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता है, वो उसके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, उसका पीछा नहीं कर रहा है, तो क्या जहां पर आप सुखी हो रहे हो उसके पीछे दुख नहीं है, या ये कह लो कि ये एक सिक्का है, उसका हेड है सुख, मतलब आप एक रिलेशनशिप की इस साइड को देख करके खुश हो रहे हो कि अभी मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूं, हमारी शादी हो गई, जिसके साथ मैं रिलेशन में रहना चाहती थी या चाहता था, और हमारा रिलेशन आज बहुत अच्छा चल रहा है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक है आज आप रिलेशनशिप में हो, तो क्या इसके पीछे दूसरा सिक्के का ये पहलू नहीं है कि रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता है?
3: Yes.
1: वो मर सकता है इंसान?
3: Yes. Yes.
1: तो क्या डर इसके पीछे नहीं चल रहा? तो जहां डर होता है, जिस थॉट के पीछे, हम इग्नोर कर सकते हैं, हम शो ऐसे कर सकते हैं नहीं नहीं नहीं नहीं कोई डर नहीं है, पर जितना ज्यादा आपको खुशी मिल रही होती है उस इंसान के साथ में, ये सोच के तो आप खुश हो रहे हो ना कि हाँ हो गया हो गया हो गया, मतलब यही आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट टू हैपन। तो जितना हम खुश हो रहे होते हैं उतना ही दुख भी होगा या नहीं होगा?
3: Yes,
1: और अगर उस मोमेंट में हम खुशी ना हो तो दुख भी नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। अब इसको ऐसे मत समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि आप खुशी ना हो तो जिंदा लाश बन जाओगे, नहीं, समझ गए ना? तो ये सब जो हो रहा है वो सब तो वैसे ही होगा जैसा हो रहा है, बस कुछ ऐसा हो सकता है आपको समझ आ जाए जिससे सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। दूसरा क्या होता है, आज सब कुछ बहुत अच्छा है मेरी लाइफ में, वो बंदा वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसा मैं चाहता हूं या चाहती हूं, मैं चाहता हूं कि वो मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, वो जो लड़की है वो कर रही है, मैं बहुत खुश हूं। अगले दिन मैं घर में आया, मैंने देखा वो चीख चिल्ला रहे हैं, मैं दुखी हूं। तो जिसको आप खुशी कह रहे हो वहां पर तो डर ही डर है, खुशी तो मुझे कहीं नजर आ नहीं रही है, बहुत ही टेम्पररी है। और हम खुश कैसे होते हैं, कुछ प्लेजर्स में इंडल्ज होकर के, लेकिन वो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं अपने बहुत सारे सेशन में टच कर चुका हूं कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है। एडिक्ट हो जाते हैं हम, दोज आर मोर लाइक एस्केप्स, जब लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो हम एस्केप्स ढूंढते हैं, भागते हैं उस सिचुएशन से। मन नहीं करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भागो, तो ये एस्केप्स हैं। इस पर्सन के साथ में प्रॉब्लम है तो यहां से भागो, उस पर्सन के पास जाओ। तो वी आर ऑलवेज रनिंग फ्रॉम हियर टू देयर। और इस भागने के चक्कर में क्या होता है, जो हो रहा होता है एक्चुअल में उसको हम कभी देखते ही नहीं है कि अंदर हो क्या रहा है। हम तो भाग रहे हैं एक चीज से दूसरी चीज की तरफ। एक चीज को बहुत एफर्ट करके अचीव किया, उसके बाद में वो चीज या तो पुरानी हो गई, या उससे बोर हो गए, या किसी और के पास में उससे बेटर कोई चीज आ गई, गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज जिससे रिलेटेड आपके माइंड में बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे कि मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, जब 10 लोगों के बीच में आप खड़े होते हो तो वो आपको गरीब की तरह देखते हैं, ये क्या किया है तूने। होता है नहीं होता है हा? और वो जिसकी वजह से आपके अंदर बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे कि मैं तो पता नहीं क्या बन गया हूं किसी और को देख करके, और हो सकता है जिसको देख करके ऐसे थॉट्स आ रहे थे वो आपसे और आगे निकल गया, अब और परेशान हो रहे हो। तो ये तरीका है जी दुनिया के पास में खुश होने का, यानी क्या जो मैं चाहता हूं वो हो जाए। कुछ भी हम अपने माइंड में कोई आइडिया बना लेते हैं, कोई कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और हम चाहते हैं कि वो हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं, बट हम कभी ये नहीं समझते वहां पर क्या फ्लॉ है। जैसे स्पेशली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के, अगर आपने उनको ऑब्जर्व किया हो, वहां पर क्या हो रहा है आजकल, ये प्लास्टिक सर्जरी बहुत चल रही है, पता है आप लोगों को, आइडिया है? हाँ, आप देखते होगे, मतलब कभी नोट किया हो कि कभी लिप्स बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, नाक बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, शक्ल पहले अच्छी थी अब और बुरी हो जाती है। तो समझो क्या हुआ, मतलब कितना फ्रेजाइल है कि शीशे में आपने अपनी शक्ल देखी और देख के कहा कि मैं, पूरी दुनिया आपको कह रही है कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन आपने देखा कि नहीं, मेरी जो नाक है ना वो लंबी है। तो अब आपको क्या चाहिए, छोटी नाक चाहिए। नाक को आप गए किसी डॉक्टर के पास में, जाके प्लास्टिक सर्जरी कराई, नाक छोटी करा ली, थॉट्स ही बदल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, और खुश हो गए देखते ही, वाह क्या किया है तुमने। लेकिन जैसे ही आपकी अगली मूवी आई तो ऑडियंस ने देख करके क्या, ये क्या फुद्दूपंती है, ये क्या कर दिया तुमने, पहले बेटर थी तुम्हारी शक्ल, अब बेटर नहीं है। तो वो थॉट बदल गया ना या नहीं बदला? वो थॉट जिसकी वजह से वो खुश हो रही थी, जिसकी वजह से पता नहीं कितना अपना काट पीट करवाई, ये करवाई वो करवाई, और करके शीशे में देखा, आह हा मजा आ गया, वो मजा कहां गया जैसे चार लोगों ने आकर के बोला ये क्या है, पहले ही सही था, अब वहां भी नहीं जा सकते, नाक लंबी कैसे होगी, छोटी तो हो जाती है, समझ आता है। जिंदगी भर के लिए फंस गई ना वो, क्यों? क्योंकि वो खुशी कहां ढूंढ रही है,
4: लोगों के कमेंट्स,
1: या तो अपने ही एक आइडिया में, अपने ही माइंड में एक थॉट क्रिएट किया कि नाक लंबी मतलब बुरी, छोटी मतलब अच्छी, रंग काला मतलब बुरा, गोरा मतलब अच्छा, और फिर उसके पीछे भाग रहे हैं। कभी देखा ऐसे कुछ लोगों को, मतलब कुछ क्रीम व्रीम लगाई और उसके बाद में गोरे भी हो गए, लोगों ने कहा ये क्या भूत आ गया। होता है, क्योंकि रिएक्शन हो जाते हैं ना कई तरह के, कई स्पॉट्स पड़ जाते हैं और हो जाते हैं, हर चीज के अपने प्लस माइनस होते हैं ना, फिर इंसान कहते हैं ये क्या हो गया, पहले ही ठीक था मैं तो। तो सुंदरता कहां है, बाहर है अंदर है? एक्चुअल में असली सुंदरता किसको कहेंगे, कि जो है उसको बदलना, या जो भी है जैसा भी है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना, उसको रियल ब्यूटी कहेंगे अंदर से। बट ऐसी एक्चुअल में है, ऐसा हम कभी सोचते नहीं है, क्योंकि लोग हमारे आसपास में हमको रियलाइज कराने के लिए बैठे हैं। ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, मार्केटिंग की दुनिया है, वो आपको ये जताने के लिए बैठी है कि आप कितने भद्दे हो और वो कितने सही है। एब्स है, ये है, वो है, फेस मोटा है, ये है, पतला है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में भरा पड़ा है। तो क्या इस तरह से कभी भी आप खुश हो सकते हो? इम्पॉसिबल। ये दुनिया की कहानी है, दुखी है लोग अंदर से, आंखों में एक सुकून नहीं मिलेगा, डीप सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, फड़फड़ाए हुए हैं, भाग रहे हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सब कोशिश कर रहे हैं खुश होने की। कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कहां जुड़ रहे हैं? थॉट के लेवल पे जुड़ रहे हैं, एक्चुअल में तो जुड़ते ही नहीं है। और चीजें, मोर पोजेशंस, वहां पर खुशी नहीं मिलती है। कुछ भी आप पोजेस करते हो, किसी भी चीज को, कुछ देर के लिए खुशी मिलती है, उसके बाद में मिलनी बंद हो जाती है, वो ज्यादा कम लगने लग जाता है जो एक टाइम पे ज्यादा लगता था। आप लोगों का सबका एक्सपीरियंस है, कोई बच्चे तो हो नहीं आप लोग, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, अभी भी ये नहीं आप कह सकते डीपली, अगर अपने आप से सच बोलो शीशे में देख करके, कि जो भी है जैसा भी है मेरे बाहर मेरे अंदर, मैं उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूं, मुझे कुछ भी नहीं बदलना है इस दुनिया में।
4: सब कुछ रहता है रहे, जाता है चला जाए। जब ये नहीं कर सकते इसका मतलब डर में जी रहे हो ना।
1: आई एम नॉट टू श्योर आपके लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि मेरे लिए इससे ज्यादा कोई और चीज मायने नहीं रखती। ये समझना कि भाई खुशी क्या है, खुश कैसे होते हैं, कुछ भी कर लो वो जो डिजायरेबल थॉट है वो बना नहीं रहता है। डिजायरेबल थॉट इज ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग और समवन और आरसेल्व्स, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है। समथिंग, थिंग्स भी बदल रही है, उससे रिलेटेड थॉट्स भी बदल रहे हैं, सिचुएशंस भी बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, आप खुद बदल रहे हो। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट। सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसके लिए हम भूखे हुए पड़े हैं। तो समझ जाओ जहां पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जितनी ज्यादा बड़ी है, समझ जाओ लोग उतने ही परेशान है। आप कभी पहाड़ों पर अगर गए हो या ऐसी किसी जगह पर गए हो, किसी हिल स्टेशन पे, वहां जाकर के देखोगे जहां पे लोग पीसफुल है ना, अपनी लाइफ से खुश है, वहां बिना एंटरटेनमेंट के भी वो खुश है। दे डोंट नीड टू मच ऑफ एंटरटेनमेंट। जहां पर अंदर से जो जितना परेशान है वहां पर उतना ही चीजें चाहिए अपना ध्यान बटाने के लिए, अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए। मोबाइल, ये सब क्या हो रहा है, मोबाइल के अंदर ये सब हो रहा है। मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, टीवी सीरियल चाहिए, ये चाहिए, मतलब टिक करके बैठ नहीं सकते। और क्या किसी चीज पे डिपेंड हो जाना खुशी है, उसके एडिक्ट हो जाना ये खुशी है, या पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाना? कि खुश रहने के लिए आपको कोई चीज नहीं चाहिए, कोई चीज मतलब कोई चीज नहीं चाहिए। कि अगर आने वाली आपकी पूरी लाइफ के लिए जो भी चीजें आपके पास में है वो सब आपके पास से छीन ली जाए, आपसे ले ली जाए, तब भी आप खुशी से झूम रहे हो। इंसान है तो उनके साथ में भी आप खुश हो, उनके बिना भी आप खुश हो। अब ये नहीं कि इसका मतलब ना लोग ये निकाल लेते हैं कि हाँ, अगर मैं इसीलिए ये बात क्लियर कर रहा हूं, फिर नहीं तो माइंड में क्या आएगा, मैं कहूंगा कि चाहे कोई नहीं भी है तब भी आप खुश हो, तो आप क्या कहोगे, हाँ बाहर में गई दुनिया। तो रिलेशन की और धज्जियां उड़ेंगी, तब उसको इंडिपेंडेंस नहीं कहेंगे। इंडिपेंडेंस किसे कहेंगे? देखो एक आदमी है वो कहता है कि मैं दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, उसको इंडिपेंडेंस कहोगे? क्योंकि रहना उसको दुनिया के साथ ही है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भी चले जाओगे, किसी आश्रम में भी रहोगे, वहां भी तो लोग होंगे या नहीं होंगे? हाँ, तो रहना तो आपको लोगों के साथ ही है। तो एक आदमी कहता है कि नहीं, मैं इस दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, दुनिया बहुत बुरी है, ये है वो भगोड़ा है, वो भाग रहा है। दूसरा है जो कहता है कि नहीं, मैं तो ना तभी खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ जब मेरे आसपास में 4-5 लोग हो, अकेले में मुझे बड़ा डर लगता है, इन सॉलिट्यूड मेरी हालत खराब हो जाती है, अजीब तरह के थॉट आ जाते हैं माइंड में। तो मुझे लोग चाहिए अपने आसपास में, कुछ लोग जिनके साथ में बड़बड़ कुछ ना कुछ चलता रहे, ताकि अंदर जो बड़बड़ हो रही है वो ना दिखे। दोनों को आप इंडिपेंडेंट कहोगे? जहां इंडिपेंडेंस नहीं है वहां पर खुशी नहीं है। इंडिपेंडेंस ही तो खुशी है, फ्रीडम ही तो खुशी है। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसको अगर बांध दिया जाए, चाहे फिजिकल लेवल पे चाहे माइंड के लेवल पे, वो खुश कैसे हो सकता है? अपने अंदर झांक के देख रहे हो कि क्या हम बंधे हुए हैं, नहीं बंधे हुए हैं? अपनी तरह तरह की उम्मीदों से हम बंधे हुए हैं। उम्मीद है कि हाँ, अभी तक तो एज हो गई, मान लो 30 साल है ना, अभी तक तो वो नहीं हुआ, बहुत ट्राई कर लिया, जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी वो परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, लेकिन एक उम्मीद है कि शायद 5 साल में हो जाएगी, 10 साल में हो जाएगी। अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल बाद हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा। तो एक उम्मीद में हम जी रहे हैं, ये उम्मीद ही पिंजरा है, इसमें आप बंधे हुए हो और हमको खुद को पता नहीं है। उम्मीद क्या, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए और क्या है? और ये इल्यूजन कि वो हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। जो भी आप सोच रहे हो, अब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मतलब रियलिटी को मैं एज इट इज देख रहे हैं, सोच रहे हो ना ये है, वो ये। एक लॉटरी की टिकट भी अगर आपकी निकल जाए तो अभी सुनने में लगेगा कि हाँ 1 करोड़ की लॉटरी की टिकट निकल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कुछ देर के लिए होगा, कुछ दिनों के लिए होगा, उसके बाद में कुछ नहीं होगा। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस पर हम किसी भी तरह के कोई भी थॉट पे डिपेंड ना हो खुश होने के लिए? ये बात ध्यान से सुन लेना, मतलब ये बहुत डीप है, अगर इसको आप पकड़ पाओ तो। चीजों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, लोगों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, अपने जो आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड में बनाए हुए हैं, सुंदर के बदसूरत के, उससे आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो। कुछ करा लेने से आप सुंदर नहीं हो जाते हो, बदसूरत नहीं हो जाते हो, सिर्फ अपने माइंड के लेवल पे वो चेंजेस चल रहे होते हैं। समझ गए या नहीं? रिलेशन कभी एक्चुअल में परफेक्ट नहीं होता है, माइंड के लेवल पे कभी लगने लग जाता है सब कुछ परफेक्ट है, फिर लगने लग जाता है सब कुछ बेकार है ना, तो एक्चुअल में सब थॉट के लेवल पे हो रहा होता है, माइंड के लेवल पे हो रहा होता है, और वहां पे हम फ्लॉ देख रहे हैं क्लियर कट कि वो थॉट्स बदलते चले जा रहे हैं। तो अगर हम थॉट के थ्रू खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट में फीलिंग्स आ गया, इमोशंस आ गया, थॉट्स आ गए, सब कुछ आ गया, उसके थ्रू अगर हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट के लेवल पे हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। ये बात क्लियर है ना, मैं इसको रिपीट तो ना करूं ना? हाँ, क्योंकि थॉट का अपोजिट हमेशा तैयार रहता है, मेरा रिलेशन अच्छा है तो वो बुरा होने में एक सेकंड का फर्क है, मेरे पास ये है वो जाने में एक सेकंड का फर्क है, ये मिलने वाला है, मैं ये एफर्ट कर रहा हूं पिछले 5 साल से, बस अब मैं अपने गोल के पास पहुंच गया हूं, मिलने वाला है, वो फेलियर में एक सेकंड का फर्क है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ खराब होने में एक सेकंड का फर्क है, ठीक है ना, जैसे वो बदला थॉट बदल गया, तो ऑल्टरनेट करता रहता है। तो एक तरीका है थॉट के लेवल पे खुश होने के, एक है बिना थॉट के खुश होने के, मतलब अपनी खुशी को थॉट से ना जोड़े, थॉट से किसको जोड़े, कोई काम करने को, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वो बैठे रहने से नहीं आएगा, खुशी से नहीं आएगा, खुशी से पेट नहीं भरेगा, खुशी से बच्चों के स्कूल की फीस नहीं आएगी, खुशी से गाड़ी नहीं आएगी, बसों में धक्के नहीं खाना पड़ेगा, गाड़ी आएगी, बढ़िया है, बुरा नहीं है, वो किससे आएगा, थॉट से आएगा, माइंड से आएगा, एक्शन से आएगा, एक्शन के लिए पहले सोचना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं बिना सोचे समझे एक्ट करने लग जाओगे। तो थॉट को हम यूज कर सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेस को हम यूज कर सकते हैं पैसे के लिए, पैसे को हम यूज कर सकते हैं कंफर्ट के लिए, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए जो जरूरी है, ठीक है, खुशी के लिए क्या करें, ये नहीं हुआ ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्या हो जाएगा, इतना कुछ तो हो रहा है इस दुनिया में, बारिश हो रही है वो हमको नहीं दिखती है, लेकिन मेरा ये नाम हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो कितनी देर तक टिकेगा उससे रिलेटेड थॉट, क्योंकि उस टाइम पे कुछ बुरा भी हो रहा होगा, हर चीज का प्लस माइनस होता है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, सक्सेस फ्री में नहीं मिलती है, जब सक्सेस मिलेगी तो साथ में ऐसे भी लोग आकर के जुड़ जाएंगे आपके साथ में जो आपसे ज्यादा पावरफुल होंगे, और वो अपने मतलब के लिए आपको यूज कर रहे होंगे, आपका टॉर्चर कर रहे होंगे, तो वो तो मिल गया जो चाहिए था, वो वाला थॉट तो पूरा हो गया, लेकिन साथ में सफरिंग भी तो आ गई ना, वो वाले थॉट्स भी तो आ गए, हम ये चाहते हैं कि हमको ये तो मिल जाए लेकिन खोना ना पड़े, पाने के लिए खोना भी तो पड़ेगा, तो जब वो खोगे तो उससे रिलेटेड भी तो थॉट्स आएंगे, तो खुश कैसे हो गए? तो अगर हिम्मत है तो इस सच को देख लो, अगर देख सकते हो तो, नहीं देखना आपकी चॉइस है, कि थॉट के लेवल पे खुश होना इम्पॉसिबल, तो अब क्या करें, कैसे खुश होएं, क्या कोई और रास्ता भी है खुश होने का? क्योंकि तो लोगों को तो यही नहीं पता है कि बिना थॉट के क्या होता है, थॉट क्या होता है। एक बात बताओ, आप यहां पर बैठे हो, अपनी सांस चलाने के लिए आपको सोचने की जरूरत है क्या? अपने आप चल रही है, देखने के लिए सोचने की जरूरत है क्या? जो दिख रहा है उसको समझने के लिए सोचने की जरूरत है, उसको यूज करने के लिए सोचने की जरूरत है, देखने के लिए सोचने की जरूरत है, सुनने के लिए सोचने की जरूरत है, जो सुन रहे हो उसको समझने के लिए सोचने की जरूरत है, सुनने के लिए सोचने की जरूरत है, जब काम करना है तो थॉट चाहिए, ऑफिस में थॉट चाहिए, वहां पे खाली नहीं बैठ सकते, पूरे दिन तो ऑफिस में नहीं रहते ना, घर पे होते हो, संडे का दिन भी मिलता है, बीच बीच में सुबह का टाइम मिलता है, रात का टाइम मिलता है, उस टाइम पे क्या कर सकते हो, खुश हो सकते हो? खुश कैसे होते हैं? कुछ करके खुशी होने वाली है, करके खुश होना मतलब थॉट के थ्रू खुश होना, विच इज इम्पॉसिबल, जो हम देख चुके हैं, तो कैसे खुश होगे बिना करे? सब कुछ अपने आप होता रहा है, कुछ करने की जरूरत क्या है? जो हो रहा है वो कम है क्या? वी डोंट नीड थॉट टू बी हैप्पी, ये अगर इस दुनिया को समझ आ जाए तो कमाल हो जाए। अब आपको खुश रहना आ गया, अब इस खुशी को आपसे कोई छीन नहीं सकता है, अब आप थॉट को यूज कर सकते हो, थॉट आपको यूज नहीं करेगा, अभी आप थॉट के पीछे भाग रहे हो, फिर थॉट आपके पीछे भागेगा। बात समझ आई? आप अपने थॉट्स के पीछे ही तो भाग रहे हो, और कहां भाग रहे हो सुबह से रात तक? वो कर रहे हो जो करना पसंद नहीं है, वैसी जिंदगी जी रहे हो जो नहीं जीना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो नहीं कर रहे, क्यों? डर की वजह से। ये डर क्या है? थॉट है। कुछ अचीव करना चाहते हो जो पता है कि उसको अचीव करने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे लाख गुना ज्यादा जिन लोगों ने अचीव कर लिया उनका ही कुछ नहीं हुआ, तो मेरा क्या खाक होगा? फिर भी भागे चले जा रहे हैं अंधों की तरह। तो आप किसके पीछे भाग रहे हो? अपनी ही तो एक सोच है जिसको पकड़ के बैठे हो, उसको सच करने में लगे हुए हो। तो जब हमारी उम्मीद टूट जाती है कि थॉट से खुशी तो नहीं मिल सकती जी, पैसा मिल सकता है, ये वो, ठीक है, तो थॉट को उसी के लिए यूज करो और पूरी पावर के साथ करो। अब आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, कोई डर है ही नहीं। थॉट मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या हो जाएगा?
4: आई बात समझ नहीं आई?
1: कुछ भी हो जाए, ब्रेथ तो फिर भी चलेगी। और अगर इसके एक लेवल और आप डीप में जाओगे, जो आई एम नॉट टू श्योर के ब्रेथ नहीं भी चल रही होगी, ये बॉडी नहीं भी होगी, तब भी मैं हूं। मेरे होने के ऊपर इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसको एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, नहीं तो ये बिलीफ बन जाएगा। फिर आप कुछ इमेजिनेशंस बना लोगे, अच्छा मैं हूं, इसका मतलब यहां से कुछ निकलेगा, वो कहीं और जाएगा, किसी कुत्ते की बॉडी में जाएगा, बिल्ली की बॉडी में जाएगा, हाँ घूम जाओगे, वो सब नहीं। लेकिन इसको आप कैसे समझ सकते हो मेरी इस बात को, कि मैं सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, बकवास कर रहा हूं, कैसे वेरीफाई कर सकते हो? जब टिक करके बैठोगे एक जगह पर, जो है उसको देखोगे, उसको समझोगे, तभी तो हो सकता है ना, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है।

0: हैप्पीनेस, बट व्हाट इज थॉटलेस माइंड? वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? थॉट से ये देखना कि थॉट की क्या लिमिटेशन है, इसका मतलब आप थॉट से परे हो गए। नहीं तो अगर आप एक थॉटलेस स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हो तो आप एक वेजिटेबल के जैसे बन गए। समझे? एक है आप समझ करके कि थॉट खुश होने के लिए काम नहीं आने वाला है, ये बात आपको गहराई से समझ आ गई है, इसलिए मैं थॉट को यूज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट इनफ, आई एम वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि थॉट यहां पर काम नहीं आने वाला है। थॉट मुझे डीप सेटिस्फैक्शन लाइफ में नहीं दे सकता है, डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है, सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता है, मुझे फियरलेस नहीं बना सकता, डर क्रिएट कर सकता है, बिकॉज थॉट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन। थॉट कांट बी विदाउट अ रिलेशनशिप। आपके और मेरे बीच में स्पेस है, इसके बारे में सोच के दिखाओ, करो कोशिश, मेरे बारे में सोच के दिखाओ, सोच सकते हो। किसी ऐसी चीज के बारे में सोच के दिखाओ जिसकी कोई फॉर्म ना हो। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? माइंड काम नहीं कर सकता है जी वहां पर। तो थॉट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ दुख है। बट अगर हम समझ जाए इसको कैसे यूज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर वहां से दुख भी मिला तो दैट इज ओके, उस दुख की वजह से आप दुखी नहीं होगे। दोनों में फर्क समझ आया? एक है आपकी लाइफ में दुख आना, एक है उसकी वजह से दुखी होना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपके सामने अगर आपका बच्चा बीमार है तो आपको दुख होगा, आप रोओगे, फूट फूट करके रोओगे, दुखी नहीं होगे। दुखी क्यों होना है? प्यार है, आउट ऑफ लव इट इज कमिंग आउट, आने दो, दुखी क्यों होना है? दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट कंप्लीटली एंड एब्सोल्यूटली। दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग, समझ से, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो आप क्या कोशिश करोगे, बैठने की कोशिश करोगे, बार बार कहोगे अब मेरे माइंड में थॉट्स क्यों आ रहे हैं? थॉट्स नहीं आने चाहिए, थॉट्स नहीं आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्या घोचू बनती है? थॉट्स आ रहे हैं, आने दो। थॉट्स चाहे हो चाहे ना हो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। थॉट्स मुझ में आते हैं, मैं थॉट्स में थोड़ी आता हूं, ये डीप है, मतलब आई एम नॉट टू श्योर पकड़ पाओगे या नहीं। आप इतना ज्यादा थॉट्स में क्यों रहते हो? क्योंकि आपको उम्मीद है कि शायद फ्यूचर में कुछ होने वाला है। अगर ये उम्मीद ही टूट जाए तो ये फ्यूचर में मुझे खुशी नहीं मिलने वाली है, मिलेगी तो अभी मिलेगी, आज मिलेगी, यही मिलेगी, कल कुछ होगा ही नहीं।
1: ये सर थॉट्स हमारे एक्शन को डायरेक्ट करते हैं ना सर, मतलब अगर मेरे
0: ऑब्वियसली ये जो थॉट्स हैं इसका कनेक्शन किससे है? थॉट्स का एक्शन से, इससे, उससे, सारी चीज, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। एक्शन का किससे कनेक्शन है? एक्शन का हैप्पीनेस से कनेक्शन है ना जी। आप कोई काम करोगे इसलिए कि वो काम करके मैं खुश हो जाऊंगा तो आप एक एस्केप ढूंढ रहे हो। बट आपको समझ आ गया है कि बिना कुछ करे भी खुश कैसे रहते हैं। अब अगर आप कुछ कर रहे हो तो दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, नहीं तो आप गुलाम हो गए ना उस काम के। आप कहते हो ये काम करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है, आपके घर वाले कहेंगे मत करो ये काम। आप काम करोगे उसके लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा। काम कर रहे हो इसलिए कि चलो अगर मेरे को वो काम करते रहना, सक्सेस तो चाहिए, सक्सेस नहीं मिल रही है। गाना गाने में बड़ा अच्छा लगता है, गानों को सुनने को तैयार नहीं है आपका, करो क्या करोगे, हो गए ना दुखी। आपको ये समझ आए कि बाहर की दुनिया में मेरी जो जरूरतें हैं वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नील है। हम क्या गलती कर रहे हैं, अपनी जरूरतें बढ़ाते चले जा रहे हैं, पता नहीं है, यही कर रहे हो आप गलतियां। क्या कभी बिना पैसे के आप एक हफ्ते तक, 10 दिन तक रहे हो अकेले? कभी नहीं। तो डर लगता है ना, मेरे से ये चला जाएगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो। गुलाम नहीं हो आप चीजों के, तो सुप्रीम इंटेलिजेंस किसे कहेंगे? खुश रहने का तरीका क्या है? अगर सिंपल वे में बोला जाए, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो भी कुछ है मेरे पास में वो सब चला भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतने सारे गुरुद्वारे हैं, वहां पर जाऊंगा, फर्स्ट क्लास लंगर मिलता है, बहुत टेस्टी होता है, घर के खाने से ज्यादा अच्छा होता है। खाना नहीं भी मिलेगा तो हाथ पैर है यार, जा करके पेड़ पौधे हैं, ये है वो है, तोड़ो पोड़ो खाओ, ये वो, खेतों में चले जाओ, जाके बोला आज थोड़ा काम करता हूँ, गाना खिला देगा, हाँ डीजे खिला दूंगा, क्या है। मतलब कहने का है कि पहले तो आपके अंदर से जो डिपेंडेबिलिटी है चीजों के ऊपर से वो निकल जाए, मतलब आपके जो खर्चे हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। दूसरी तरफ से आपको थॉट को यूज करना आ जाए, आपको ये पता हो कि आई हैव द पोटेंशियल टू अर्न एज मच एज आई want, as much as I can, at the same time, I have the capacity to live

विदाउट मनी, सीडलेस हो गए ना। ये दो एक्सट्रीम होती हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग इस दुनिया में प्रॉब्लम क्या है, अपने पोटेंशियल पे काम नहीं करते, अपने आप को कैपेबल बनाने के ऊपर, कि भाई अपने आप को ऐसा बना दिया जाए कि अगर जीरो से कहीं तक भी पहुंचना है तो मेरे लिए खेल है, पैसा कमाना मेरे लिए खेल है, ऐसा किसी की आंखों में नजर नहीं आता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग होते हैं जिनकी आंखों में डर नजर आता है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी भी आंखों में डर नजर आता है कि पिताजी का बिजनेस था, उन्होंने सेट करके दे दिया है, कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, डरे हुए हैं। तो कैसा अपने आप को बना दो, एक तरफ से वो कैसे बनेगा, थॉट से बनेगा, और कैसे बनेगा, मतलब खुश रहेंगे तो नहीं बनने वाला कि आप बैठे हुए आराम से, हाँ ठीक है अपने आप सब हो जाएगा, नहीं होगा जी। थॉट से अपने आप को बेटर बनाया, अपने ऊपर काम किया, ये किया वो किया, वो किस लिए कर रहे हो आप, अपने आप को कैपेबल बनाने के लिए। लेकिन ये तो हो गई एक साइड, इसको आप यूज कर रहे हो अपने आप को बेटर बनाने के लिए। दूसरी तरफ से क्या है, आपको समझ आ जाएगा अब मैं चाहे अपने आप को कितना भी बेटर बना लूं, कितना भी पैसा कमा लूं, कैसा भी कुछ कर लूं, इस सबसे भी कुछ होने वाला नहीं है। देख लिया दुनिया में बहुत तरह के लोग, देख लिए हर तरह के, देख लिए वो भी, देख लिए जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं, वो भी देख लिए जो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो कहां है, इसको ध्यान से समझ लेना, ये समझने में है कि जो थॉट्स है इसमें कुछ नहीं पड़ा, ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बस इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गुड भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? इस शानदार से ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आरजे अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें है आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हो जाइए रेडी फटाफट से मसाला वाली।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इस शानदार सुरक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई अब टाइम हो गया वेदर अपडेट का। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 38 डिग्री जाने वाला है, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 29 डिग्री रहने वाला है। ह्यूमिडिटी आपको मिलने वाली है 39%, साथ ही विंड स्पीड मिलेगी 10 और इसी के साथ दिन है सनी सनी, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है लेकिन गर्मी अभी भी उतनी है। तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखेगा, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

कभी आपने सोचा है जब हम दो पहियों पर घूमते हैं ना ज्यादा फ्यूल लगता है और अनलिमिटेड हेल्थ बेनिफिट जरूर मिल जाता है। मैं किन दो पहियों की बात कर रही हूँ? आज बात करने जा रहे हैं बाइसिकल की। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे। और अगर मैं इस दिन की बात करूँ ना, जो साइकिलिंग के हेल्थ एनवायरमेंट और मोबिलिटी बेनिफिट्स को सेलिब्रेट करता है आज का दिन। और आज का दिन ना अकेले नहीं आया, आज का दिन अपने साथ एक कहानी लेकर आ रहा है। और कहानी ये है, आपको अपने बचपन के डेज तो याद ही होंगे, जब साइकिल चलाना सीखा होगा तो उस टाइम पर गिरे तो जरूर होंगे और वो एक्सपीरियंस ना जिंदगी भर याद रह जाता है। पहले डर लगता था, फिर बैलेंस बनाना सीखा और फिर धीरे धीरे ना साइकिल चलाना सीख लिया, यानी कि आजादी महसूस हुई कि अब हम अकेले साइकिल चला सकते हैं। और इसलिए आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। सबसे पहले तो आइए ये जानते हैं कि क्या स्पेशल है आज के दिन। अगर हम साइकिल का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट है, साथ ही फिटनेस इम्प्रूव करता है हमारी, फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है चाहे फिर कितनी भी प्राइस हाइक हो जाए फ्यूल के, ट्रैफिक और पॉल्यूशन को कम करता है। तो देखिए स्पेशल तो है साइकिल, इसलिए कहा जाता है लाइफ और साइकिल में ना एक बात कॉमन है, बैलेंस बना रहे तो सफर स्मूथ हो जाता है नहीं तो जिंदगी में वैसे ही इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है। सो माय डियर लिसनर्स, आज मैं आप सभी के लिए एक चैलेंज लेकर आई हूँ। चैलेंज ऑफ द डे ये है, अगर पॉसिबल हो तो आज एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए साइकिल जरूर इस्तेमाल कीजिए, आपकी हेल्थ भी हैप्पी होगी और इन्वायरमेंट भी। एंड इसी के साथ सुनते रहिए एक शानदार सा ट्रैक जो है खास आपके लिए मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।
2: हाँ तो अर्ज किया है।
3: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
2: कर रहे हैं आप, सुनो तो।
3: इरशाद,
2: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
3: तुम्हारे नंबर पे?
2: हाँ जी।
3: अच्छा,
2: और उन्होंने पूछा क्या?
3: क्या पूछा?
2: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
3: क्या बात कर रहे हो?
2: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
3: अच्छा,
2: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
3: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
2: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
3: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
2: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
3: बाय।
2: सुनो तो, कहाँ चली?
3: बाय।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज मैं लौट आई हूँ फिटनेस वाले फंडे के साथ। बहुत दिन हो गए थे कुछ फिटनेस वाली टिप नहीं दी थी। सो भाई आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार दिन, जो कि हमें ये याद दिलाता है कि सबसे सस्ते जिम मेंबरशिप अगर चाहिए ना तो रनिंग कर लीजिए डेली बेसिस पे, बिकॉज आज सेलिब्रेट किया जा रहा है ग्लोबल रनिंग डे, यानी कि एक दिन जो लोगों को एक्टिव लाइफस्टाइल और रनिंग के बेनिफिट्स के बारे में बताता है, उन्हें इंस्पायर करता है कि भागो जितना हो सकता है भागो। और इसीलिए भाग मिल्खा भाग देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये हमें इंस्पायर करती है। अच्छा, अगर मैं जिम की बात करूँ ना तो ये दिन भी अपने साथ एक कहानी लेकर आए। कहानी ये है, एक इंसान ने न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन लिया कि वो फिट होगा, लेकिन जिम मेंबरशिप भी ली और फिर स्पोर्ट्स शूज भी खरीदे, लेकिन 10 दिन बाद जो जोश आया था ना वो सब गायब हो गया। फिर उसने ये सोचा कि चलो कुछ ना से तो कुछ ही सही, तो 10 मिनट की मॉर्निंग वॉक ही हो जाए। बस फिर धीरे धीरे 10 मिनट की मॉर्निंग वॉक एक

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
2: प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी इंतजार का नाम भी होता है। सिमरन, सपनों में जीने वाली लड़की।
3: मेरे ख्वाबों में जो
2: राज, मस्ती मजाक और दिल से जीने वाला आशिक।
4: रुक जाओ दिल दीवाने,
2: यूरोप के एक सफर में मिले, टकराए, लड़ते झगड़ते दोस्ती हो गई, पर प्यार समझने में देर लग गई।
5: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: जब सिमरन एक तय की गई शादी के लिए इंडिया गई, राज ने फैसला किया प्यार को जीतना है, पर परिवार के आशीर्वाद के बिना नहीं। एक तरफ संस्कार, दूसरी तरफ सच्चा प्यार, एक तरफ मजबूरी तो दूसरी तरफ जुनून। राज ने घर से रिश्ता जोड़ा, सबका दिल जीता, लेकिन बाऊजी का पत्थर दिल पिघलाना अभी बाकी था। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया।
6: जा सिमरन, जा, जा जीने अपनी जिंदगी।
2: इसलिए कहते हैं

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: हम कहीं ने कहूँ कि वाह फरे वादल फरे वायरो फरे पड़े एक बार बोले पची मारा मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे ये।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, कुछ दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं होती, और कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। वो इंतजार करती हैं वक्त का। एक कहानी मोहब्बत, धोखा और एक आत्मा का इंतकाम। ये कहानी है 1920 की।
2: तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं।
1: अर्जुन सिंह राठौड़ एक आर्किटेक्ट जिसने फैमिली के खिलाफ जाकर लीसा से शादी की और प्यार उन्हें एक वीरान हवेली तक ले आया।
3: इतने खूबसूरत घर को कोई तोड़ना क्यों चाहता है?
1: जो सिर्फ एक हवेली नहीं, एक मनहूस कहानी का गवाह भी थी। उस हवेली में आते ही अजीब हादसे शुरू होने लगे।
4: कौन है?
1: लीसा को अजनबी चेहरे दिखने लगे। हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। एक भयानक साया उसके आसपास मंडराने लगा।
4: इस घर में कुछ है, कुछ है जिसे मैं छू नहीं सकती पर महसूस जरूर कर सकती हूँ।
1: और फिर लीसा को एक तस्वीर मिलती है गायत्री की, और उसके बाद आता है एक सच। ये कहानी सिर्फ प्यार नहीं, इंतकाम की भी थी।
3: लीसा और कोई नहीं, गायत्री ही है बेटा। वो दूसरा जन्म लेकर पालनपुर आ पहुँची है।
1: वहाँ के प्रीस्ट ने ये चेतावनी भी दी थी कि मोहन कांत की आत्मा वापस आई है लीसा के रूप में। और फिर आती है अमावस की रात। लीसा का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। पर आखिर जीता सिर्फ एक ही, सच्चा प्यार। अर्जुन ने लीसा को आजाद किया और वो आत्मा हमेशा के लिए हवेली की दीवारों में समा गई। मोहब्बत हो या हवेली, पुरानी हो तो संभाल के रखना, और हाँ, अगले जन्म के वादे सोच समझ के करना। क्या पता कौन सीरियसली

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: जीवन का असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ तपती जमीन है, लेकिन सोचिए कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भरकर किसी सुरक्षित जगह रख दो। छोटी सी मेहनत लेकिन किसी के लिए बड़ी राहत। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उनके लिए भी सोचिए जो बोल नहीं सकते।

0: शुरू हो जा।
1: तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।
1: अरे सुनो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: इंसानियत सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, हर जीव के लिए है। क्या कभी सोचा है कि जो पंछी आपकी छत पर आते हैं वे सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी उम्मीद से आते हैं। गर्मी उनके लिए भी उतनी ही कठिन है जितनी हमारे लिए। एक छोटी सी कोशिश, एक मटका या एक बोल पानी भर कर रखिए, शायद आपकी एक कटोरी पानी से किसी की प्यास बुझ सके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: देखो, बॉयफ्रेंड्स ना फिल्मों की तरह होते हैं, कुछ टाइम पास तो कुछ ब्लॉकबस्टर्स।
2: मोहब्बत हो या म्यूजिक, दोनों अधूरे सुरों में भी खूबसूरत लगते हैं, और यही है ए दिल है मुश्किल की कहानी।
3: आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म का हीरो।
2: अयान, एक मस्ती भरा आशिक।
4: जब मैं 2 साल का था, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई।
1: चली गई?
4: भाग गई।
1: मदर तो इंडिया होती है, तुम्हारी मिल्का निकली, भाग गई।
2: जो प्यार को दोस्ती समझता है, जब तक उसका दिल एलिजे के लिए धड़कना शुरू नहीं करता।
5: बिना गुजारा दिल है मुश्किल।
2: पर एलिजे के लिए दोस्ती का एहसास गहरा है, लेकिन प्यार का नहीं। मोहब्बत के इस सफर में आती है सबा, जो अयान को प्यार का दूसरा रंग दिखाती है, खुद से प्यार करने का।
6: अरे वाह, बड़े वफादार है आप यासू, आपकी इजाजत के बगैर बाहर भी नहीं निकलते।
2: लेकिन क्या दिल अपने जज्बात बदल सकता है, या कुछ मोहब्बतें सिर्फ दर्द का गीत बनकर ही जी जाती हैं? क्योंकि कुछ कहानियाँ अंजाम से नहीं, सिर्फ जज्बात से पूरी होती हैं।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
5: हर दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, कुछ एल्युमिनियम के भी होते हैं, और कुछ के पीछे तो मौत लिखी होती है। राहुल और निधि नए घर की तलाश में, पर जो मिला वो एक मनहूस कहानी थी। एक हवेली जो सदियों से बंद थी और एक दरवाजा जो सालों से बंद था, शायद जाम हो गया था। जब उन्होंने उस दरवाजे को छुआ तो पूरी हवेली जाग गई दीवारों से।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सोचा वरना हंसता रह जाएगा।
2: कौन है ये?
3: तुम्बाड़े कहानी जो सिर्फ डर नहीं, लालच का असली चेहरा दिखाती है। बारिश से भरा एक हॉरर फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें एक खजाना छुपा है, पर उसके साथ एक श्राप भी। विनायक राव एक लालची इंसान जो तुम्बाड़ के पुराने हवेली के खजाने का राज जानता है।
2: समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच।
3: पर वो ये भूल जाता है कि जो चीज देवी ने खुद अपने पेट में लॉक कर दी, उसे छूना मतलब मौत को इनवाइट करना है। हस्तर वो राक्षस जो सोना चाहता था, पर लालच इतना था कि रोटी भी उसके हाथ से फिसल गई। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंसान का लालच। पर विनायक हर बार अपनी मौत से बच के सोने के सिक्के ले आता है। पर एक सवाल, लालच की कोई सीमा होती है, या एक ना एक दिन वो इंसान को निगल जाता है?
2: डरा नहीं रहा हूँ, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूँ।
3: दुनिया में सबसे बड़ा श्राप क्या है? लालच। और तुम्बाड़ शहर ये सबक एक कहानी की तरह नहीं, एक लोरी की तरह सुनाता है। सोचा

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: यार एक बात बता, पानी पर GST लग गया है क्या?
2: अरे नहीं यार, पानी तो बिल्कुल फ्री है।
1: तो फिर भी कोई रख क्यों नहीं रहा? अरे भाई, जब ना कोई टैक्स है ना कोई डिलीवरी चार्ज है, तो एक प्याला पानी रखने में कैसा एतराज है?
2: इससे पहले कि ये बेजुबान मोहल्ले का RTI दाखिल करें कि पानी गया कहाँ, उससे पहले एक बर्तन भर दीजिए और बेजुबानों की जान बचा लीजिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जंग।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: जीवन का असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ तपती जमीन है, लेकिन सोचिए कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भरकर किसी सुरक्षित जगह रख दो। छोटी सी मेहनत लेकिन किसी के लिए बड़ी राहत। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उनके लिए भी सोचिए जो बोल नहीं सकते।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: मुझे वीराना पसंद है, समझे?
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, श्राप बनकर नेटफ्लिक्स के हॉरर सेक्शन की तरह हमेशा जिंदा रहती हैं। एक शापित हवेली, एक राज जो मौत से भी ज्यादा भयंकर था, और एक जैस्मिन जो सिर्फ नाम से मासूम थी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से मेकओवर पैकेज ले लिया और बस अब वो सिर्फ लड़की नहीं डायन बन चुकी थी। पर हर बुराई का अंत होता है, पर इस बार श्राप लाइफ टाइम वारंटी के साथ आया था। सालों बाद हवेली एक बार फिर जाग गई और इस बार नए मेहमान की तलाश थी।
3: तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना।
2: वीराना सिर्फ एक जगह नहीं, एक हॉरर फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो आया वो गया नहीं, और जो गया उसका लास्ट सीन अब तक एक्टिव है। अगर कभी किसी वीरान हवेली में फ्री स्टे मिले तो समझ लो पेमेंट तुमसे नहीं, तुम पर होने वाला है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इरशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल। अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फूटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपनी लस्सी तो ही पी, मैं आती।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सोचा वरना हंसता रह जाएगा।
2: कौन है ये?
3: तुम्बाड़े कहानी जो सिर्फ डर नहीं, लालच का असली चेहरा दिखाती है। बारिश से भरा एक हॉरर फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें एक खजाना छुपा है, पर उसके साथ एक श्राप भी। विनायक राव एक लालची इंसान जो तुम्बाड़ के पुराने हवेली के खजाने का राज जानता है।
2: समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच।
3: पर वो ये भूल जाता है कि जो चीज देवी ने खुद अपने पेट में लॉक कर दी, उसे छूना मतलब मौत को इनवाइट करना है। हस्तर वो राक्षस जो सोना चाहता था, पर लालच इतना था कि रोटी भी उसके हाथ से फिसल गई। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंसान का लालच। पर विनायक हर बार अपनी मौत से बच के सोने के सिक्के ले आता है। पर एक सवाल, लालच की कोई सीमा होती है, या एक ना एक दिन वो इंसान को निगल जाता है?
2: डरा नहीं रहा हूँ, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूँ।
3: दुनिया में सबसे बड़ा श्राप क्या है? लालच। और तुम्बाड़ शहर ये सबक एक कहानी की तरह नहीं, एक लोरी की तरह सुनाता है। सोच।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जैकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है ना, रो रहा हूं मैं।
2: पर उसके अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन, एक बारिश भरी रात में, उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही,
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी, राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं, आपकी है, चलो गाओ।
5: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूर ही रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: बुला देना मुझे, अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरोड़ सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जैकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है ना, रो रहा हूं मैं।
2: पर उसके अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन एक बारिश भरी रात में उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी, राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं आपकी है, चलो गाओ।
5: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूर ही रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: बुला देना मुझे, अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: यार एक बात बता, पानी पर GST लग गया है क्या?
2: अरे नहीं यार, पानी तो बिल्कुल फ्री है।
1: तो फिर भी कोई रख क्यों नहीं रहा? अरे भाई, जब ना कोई टैक्स है ना कोई डिलीवरी चार्ज है, तो एक प्याला पानी रखने में कैसा एतराज है?
2: इससे पहले कि ये बेजुबान मोहल्ले का RTI दाखिल करें कि पानी गया कहाँ, उससे पहले एक बर्तन भर दीजिए और बेजुबानों की जान बचा लीजिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इशान,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल।
0: बाबा,
1: अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फूटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपनी लस्सी तो ही पी, मैं आता हूँ।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: मुझे वीराना पसंद है, समझे?
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, श्राप बनकर नेटफ्लिक्स के हॉरर सेक्शन की तरह हमेशा जिंदा रहती हैं। एक शापित हवेली, एक राज जो मौत से भी ज्यादा भयंकर था, और एक जैस्मिन जो सिर्फ नाम से मासूम थी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से मेकओवर पैकेज ले लिया और बस अब वो सिर्फ लड़की नहीं, डायन बन चुकी थी। पर हर बुराई का अंत होता है, पर इस बार श्राप लाइफ टाइम वारंटी के साथ आया था। सालों बाद हवेली एक बार फिर जाग गई और इस बार नए मेहमान की तलाश थी।
3: तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना।
2: वीराना सिर्फ एक जगह नहीं, एक हॉरर फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो आया वो गया नहीं, और जो गया उसका लास्ट सीन अब तक एक्टिव है। अगर कभी किसी वीरान हवेली में फ्री स्टे मिले तो समझ लो पेमेंट तुमसे नहीं, तुम पर होने वाला है।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: हर दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, कुछ एल्युमिनियम के भी होते हैं, और कुछ के पीछे तो मौत लिखी होती है। राहुल और निधि नए घर की तलाश में, पर जो मिला वो एक मनहूस कहानी थी। एक हवेली जो सदियों से बंद थी और एक दरवाजा जो सालों से बंद था, शायद जाम हो गया था। जब उन्होंने उस दरवाजे को छुआ तो पूरी हवेली जाग गई, दीवारों से सांसें सुनाई देने लगी, दरी पर पैरों के निशान उभरने लगे, और फिर वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर तुमने उन्हें खोला तो हो सकता है अंदर वाले तुम्हें बाहर ही ना आने दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: अगर वो बोल सकती तो शायद कहती, थोड़ा पानी मिलेगा। मगर वो बोलते नहीं, बस लाचार भरी नजरों से हमारी ओर देखते हैं। तो आइए उनकी प्यास हमारी इंसानियत से मिटाएं। गर्मी में बाहर पानी रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी बहुत सुकून देता है।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: ऐसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: निकलते हैं पसीना भिगा देता है।
1: अरे
0: पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
1: हमारी हरकतें जानता होगा।
0: अब पूरा सुनो, पहले पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं, पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं, अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
1: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
0: अरे
1: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।
0: अरे सुनो।

0: करो क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सुनो जरा, चलो करें कुछ मजा।
2: नया घर लेना मतलब नए सपने, नई उम्मीदें और कभी कभी नए मेहमान। एक नया घर लेना लाइफ का बड़ा अचीवमेंट होता है, पर जब घर के साथ एक भूत मुफ्त मिले तो
3: भूतनाथ नहीं, ये मेरा घर है, चलो निकलो यहाँ।
2: शर्मा फैमिली गोवा शिफ्ट होती है और एक हेरिटेज लुक वाला बंगलो रेंट करती है, नाथ विला। भाई नाम ही इतना क्लासी है तो भूत भी वीआईपी होगा। मोहल्ले वाले वॉर्न करते हैं, भाई हॉन्टेड है पर इंडियन पेरेंट्स को सिर्फ 2 महीने का रेंट दिख रहा होता है। घर में अजीब चीजें होने लगती हैं, टीवी खुद चलना बंद, फ्रिज से आइसक्रीम गायब, मतलब भाई भूत भी फुल सेवेज मूड में है। पर छोटा बंकू भूत से दोस्ती कर लेता है। भूतनाथ अंकल भी सोच रहे होंगे, अरे यार ये डर क्यों नहीं रहा,
4: कान्हा भूत हूँ।
5: कान्हा भूत नहीं होते, अच्छा तो तुम यहाँ पर रहने आए हो।
2: धीरे धीरे पता लगता है कि नाथ साहब ही इस घर के असली मालिक हैं और यहीं अटक गए हैं। ईएमआई का लोन चुकाना पड़ा होता तो पहले ही स्वर्ग सिधार जाते। अब बंकू की मिशन मोड एंट्री होती है, भूत को फ्री करना है। एक तरफ स्कूल का होमवर्क और दूसरी तरफ भूत की मोक्ष यात्रा। बचपन काफी स्ट्रेस में चल रहा था, आखिरकार नाथ अंकल स्वर्ग एक्सप्रेस पकड़ के निकल लेते हैं और घर अब हॉन्टेड नहीं रहा। लेकिन शर्मा जी की टेंशन खत्म नहीं हुई, अब उनको नया टेनेंट ढूंढना है। घर सस्ता मिले तो एक बार चेक कर लो, कहीं घर के साथ भूत मुफ्त ना मिल रहा हो, क्योंकि हर भूत भूतनाथ नहीं होता।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
3: रेडियो महारानी 89.6 FM कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

0: कहानी
1: कॉलेज के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक।
0: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा सुन ले रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
1: इसके आगे मैं नहीं बता सकती, इनसे ही पूछ लो।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: दोस्ती, प्यार, परिवार और एक डॉग जो लव स्टोरी का असली हीरो निकला। प्रेम एक बिंदास देवर, निशा एक शरारती साली साहिबा, दोनों की नोक झोंक मस्ती और आंखों ही आंखों में रोमांस चल रहा था।
2: पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है।
1: पर ये कोई ऑर्डिनरी लव स्टोरी नहीं थी, ये थी संस्कार सिनेमैटिक यूनिवर्स की ओजी फिल्म।
3: हम आपके हैं कौन?
2: ये मौसम का जादू है मितवा।
1: पिक्चर से लंबे गाने, दिल से दोस्ती, भाभी तेरा देवर दीवाना और प्रेम निशा का पहला पहला प्यार, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। पूजा, जो प्रेम के भाई राजेश की पत्नी थी, एक ड्रामेटिक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और फिर होता है संस्कार वर्सेस प्यार का महायुद्ध।
2: मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है।
1: लेकिन राजरे की फिल्म में ड्रामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश के लिए निशा का रिश्ता फिक्स होने वाला था, पर प्रेम का प्यार और टफी, हाँ वही लेजेंडरी डॉगी, हीरो बनकर बीच में आ जाते हैं। अब सवाल ये था, प्रेम सेक्रिफाइस करेगा या प्यार की होगी जीत? फैमिली ड्यूटी स्ट्रॉन्ग निकलेगी या दिल की सुननी पड़ेगी?
2: आपके
1: प्यार किया तो डरना क्या? एंड एट लास्ट निशा और प्रेम का प्यार जीत जाता है और फिल्म की होती है हैप्पी एंडिंग।

0: आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हेलमेट ही मांग लिया।
1: अब हम स्कूटी कैसे चलाएंगे?

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: अनजाने अजनबी।
2: शादी सिर्फ शादी नहीं होती, थोड़ी सी शर्माहट, थोड़ी सी मिठाई और
3: हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार।
2: एक तरफ प्रेम, जो सीधा साधा लड़का जो शादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, और दूसरी तरफ हमारी पूनम, जो एक शर्मीली और सुशील लड़की जो प्यार को एक समर्पण समझती है।
4: जी जी, क्या कह के उनको बुलाओगी, दूल्हा बनके जो आएगी।
2: पहली नजर में शर्माना, घर वालों का आशीर्वाद और विवाह फिक्स।
5: सहरा सजा के घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे तो जानती हो क्या होगा?
6: क्या?
5: हमारे गली के कई घरों में चूल्हों पे रोटियां जल जाएंगी।
2: राजश्री की पिक्चर में ड्रामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लड़की वाले नर्वस, लड़के वाले ओवर एक्साइटेड, पर जब किस्मत ने कठिन इम्तिहान दिया तब प्रेम ने दिखाया कि असली प्यार सिर्फ सुंदरता से नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाने से होता है।
1: तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है।
2: और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है विवाह मूवी की, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ शादी के मंडप तक ही नहीं, जिंदगी भर साथ चलने का वादा होता है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: अगर वो बोल सकती तो शायद कहती, थोड़ा पानी मिलेगा, मगर वो बोलते नहीं, बस लाचार भरी नजरों से हमारी ओर देखते हैं। तो आइए उनकी प्यास हमारी इंसानियत से मिटाएं। गर्मी में बाहर पानी रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी बहुत सुकून देता है।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
2: प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी इंतजार का नाम भी होता है। सिमरन, सपनों में जीने वाली लड़की।
3: मेरे ख्वाबों में जो आए।
2: राज, मस्ती, मजाक और दिल से जीने वाला आशिक।
4: रुक जाओ दिल दीवाने, पूछो तो मैं जरा।
2: यूरोप के एक सफर में मिले, टकराए, लड़ते झगड़ते दोस्ती हो गई, पर प्यार समझने में देर लग गई।
5: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: जब सिमरन एक तय की गई शादी के लिए इंडिया गई, राज ने फैसला किया प्यार को जीतना है, पर परिवार के आशीर्वाद के बिना नहीं। एक तरफ संस्कार, दूसरी तरफ सच्चा प्यार, एक तरफ मजबूरी तो दूसरी तरफ जुनून। राज ने घर से रिश्ता जोड़ा, सबका दिल जीता, लेकिन बाऊजी का पत्थर दिल पिघलाना अभी बाकी था। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया।
6: जा सिमरन, जा, जा जीने अपनी जिंदगी।
2: इसलिए कहते हैं

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: एक वार बोलिया पछी मारा मित्रों, आ मित्रों कदी ना फरे के हालो ने

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जंग।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, कुछ दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं होती, और कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। वो इंतजार करती हैं वक्त का। एक कहानी मोहब्बत, धोखा और एक आत्मा का इंतकाम। ये कहानी है 1920 की।
2: तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं।
1: अर्जुन सिंह राठौड़ एक आर्किटेक्ट जिसने फैमिली के खिलाफ जाकर लीसा से शादी की और प्यार उन्हें एक वीरान हवेली तक ले आया।
3: इतने खूबसूरत घर को कोई तोड़ना क्यों चाहता है?
1: जो सिर्फ एक हवेली नहीं, एक मनहूस कहानी का गवाह भी थी। उस हवेली में आते ही अजीब हादसे शुरू होने लगे।
4: कौन है?
1: लीसा को अजनबी चेहरे दिखने लगे। हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। एक भयानक साया उसके आसपास मंडराने लगा।
4: इस घर में कुछ है, कुछ है जिसे मैं छू नहीं सकती पर महसूस जरूर कर सकती हूँ।
1: और फिर लीसा को एक तस्वीर मिलती है गायत्री की, और उसके बाद आता है एक सच। ये कहानी सिर्फ प्यार नहीं, इंतकाम की भी थी।
3: लीसा और कोई नहीं, गायत्री ही है बेटा। वो दूसरा जन्म लेकर पालनपुर आ पहुँची है।
1: वहाँ के प्रीस्ट ने ये चेतावनी भी दी थी कि मोहन कांत की आत्मा वापस आई है लीसा के रूप में। और फिर आती है अमावस की रात। लीसा का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। पर आखिर जीता सिर्फ एक ही, सच्चा प्यार। अर्जुन ने लीसा को आजाद किया और वो आत्मा हमेशा के लिए हवेली की दीवारों में समा गई। मोहब्बत हो या हवेली, पुरानी हो तो संभाल के रखना, और हाँ, अगले जन्म के वादे सोच समझ के करना। क्या पता कौन सीरियसली ले।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: जीवन का असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ तपती जमीन है, लेकिन सोचिए कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भरकर किसी सुरक्षित जगह रख दो। छोटी सी मेहनत लेकिन किसी के लिए बड़ी राहत। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उनके लिए भी सोचिए जो बोल नहीं सकते।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे
1: पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अब पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोए हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।
1: अरे सुनो, अरे

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: इंसानियत सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, हर जीव के लिए है। क्या कभी सोचा है कि जो पंछी आपकी छत पर आते हैं वे सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी उम्मीद से आते हैं। गर्मी उनके लिए भी उतनी ही कठिन है जितनी हमारे लिए। एक छोटी सी कोशिश, एक मटका या एक बोल पानी भर कर रखिए, शायद आपकी एक कटोरी पानी से किसी की प्यास बुझ सके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: देखो, बॉयफ्रेंड्स ना फिल्मों की तरह होते हैं, कुछ टाइम पास तो कुछ ब्लॉकबस्टर्स।
2: मोहब्बत हो या म्यूजिक, दोनों अधूरे सुरों में भी खूबसूरत लगते हैं, और यही है ए दिल है मुश्किल की कहानी।
3: आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म का हीरो।
2: अयान, एक मस्ती भरा आशिक।
4: जब मैं 2 साल का था, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई।
1: चली गई?
4: भाग गई।
1: मदर तो इंडिया होती है, तुम्हारी मिल्का निकली, भाग गई।
2: जो प्यार को दोस्ती समझता है, जब तक उसका दिल एलिजे के लिए धड़कना शुरू नहीं करता।
5: बिना गुजारा ए दिल,
2: के लिए दोस्ती का एहसास गहरा है लेकिन प्यार का नहीं। मोहब्बत के इस सफर में आती है सबा, जो अयान को प्यार का दूसरा रंग दिखाती है, खुद से प्यार करने का।
6: अरे वाह, बड़े वफादार हैं आप यासु, आपकी इजाजत के बगैर बाहर भी नहीं निकलते।
2: लेकिन क्या दिल अपने जज्बात बदल सकता है, या कुछ मोहब्बतें सिर्फ दर्द का गीत बनकर ही जी जाती हैं? क्योंकि कुछ कहानियां अंजाम से नहीं, सिर्फ जज्बात से पूरी होती।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
5: हर दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, कुछ एल्युमिनियम के भी होते हैं, और कुछ के पीछे तो मौत लिखी होती है। राहुल और निधि नए घर की तलाश में, पर जो मिला वो एक मनहूस कहानी थी। एक हवेली जो सदियों से बंद थी और एक दरवाजा जो सालों से बंद था, शायद जाम हो गया था। जब उन्होंने उस दरवाजे को छुआ तो पूरी हवेली जाग गई। दीवारों से सांसें सुनाई देने लगी, दरी पर पैरों के निशान उभरने लगे, और फिर वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर तुमने उन्हें खोला तो हो सकता है अंदर वाले तुम्हें बाहर ही ना आने दें।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सोचा वरना हंसता रह जाएगा।
2: कौन है ये?
3: तुम्बाड़ एक कहानी जो सिर्फ डर नहीं, लालच का असली चेहरा दिखाती है। बारिश से भरा एक हॉरर फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें एक खजाना छुपा है, पर उसके साथ एक श्राप भी। विनायक राव एक लालची इंसान जो तुम्बाड़ के पुराने हवेली के खजाने का राज जानता है।
2: समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच।
3: पर वो ये भूल जाता है कि जो चीज देवी ने खुद अपने पेट में लॉक कर दी, उसे छूना मतलब मौत को इनवाइट करना है। हस्तर वो राक्षस जो सोना चाहता था, पर लालच इतना था कि रोटी भी उसके हाथ से फिसल गई। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंसान का लालच। पर विनायक हर बार अपनी मौत से बच के सोने के सिक्के ले आता है। पर एक सवाल, लालच की कोई सीमा होती है, या एक ना एक दिन वो इंसान को निगल जाता है?
2: डरा नहीं रहा हूँ, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूँ।
3: दुनिया में सबसे बड़ा श्राप क्या है? लालच। और तुम्बाड़ शहर ये सबक एक कहानी की तरह नहीं, एक लोरी की तरह सुनाता है। सोच।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: यार एक बात बता, पानी पर GST लग गया है क्या?
2: अरे नहीं यार, पानी तो बिल्कुल फ्री है।
1: तो फिर भी कोई रख क्यों नहीं रहा? अरे भाई, जब ना कोई टैक्स है ना कोई डिलीवरी चार्ज है, तो एक प्याला पानी रखने में कैसा एतराज है?
2: इससे पहले कि ये बेजुबान मोहल्ले का RTI दाखिल करें कि पानी गया कहाँ, उससे पहले एक बर्तन भर दीजिए और बेजुबानों की जान बचा लीजिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा अच्छा।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: जीवन का असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ तपती जमीन है, लेकिन सोचिए कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भरकर किसी सुरक्षित जगह रख दो। छोटी सी मेहनत लेकिन किसी के लिए बड़ी राहत। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उनके लिए भी सोचिए जो बोल नहीं सकते।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: मुझे वीराना पसंद है, समझे?
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, श्राप बनकर नेटफ्लिक्स के हॉरर सेक्शन की तरह हमेशा जिंदा रहती हैं। एक शापित हवेली, एक राज जो मौत से भी ज्यादा भयंकर था, और एक जैस्मिन जो सिर्फ नाम से मासूम थी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से मेकओवर पैकेज ले लिया और बस अब वो सिर्फ लड़की नहीं डायन बन चुकी थी। पर हर बुराई का अंत होता है, पर इस बार श्राप लाइफ टाइम वारंटी के साथ आया था। सालों बाद हवेली एक बार फिर जाग गई और इस बार नए मेहमान की तलाश थी।
3: तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना।
2: वीराना सिर्फ एक जगह नहीं, एक हॉरर फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो आया वो गया नहीं, और जो गया उसका लास्ट सीन अब तक एक्टिव है। अगर कभी किसी वीरान हवेली में फ्री स्टे मिले तो समझ लो पेमेंट तुमसे नहीं, तुम पर होने वाला है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इशार।
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो। इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल।
0: बाबा।
1: अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फूटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपनी लस्सी तो ही पी, मैं आ

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जनता सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सोचा वरना हंसता रह जाएगा।
2: कौन है ये?
3: तुम्बाड़े कहानी जो सिर्फ डर नहीं, लालच का असली चेहरा दिखाती है। बारिश से भरा एक हॉरर फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें एक खजाना छुपा है, पर उसके साथ एक श्राप भी। विनायक राव एक लालची इंसान जो तुम्बाड़ की पुराने हवेली के खजाने का राज जानता है।
2: समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच।
3: पर वो ये भूल जाता है कि जो चीज देवी ने खुद अपने पेट में लॉक कर दी, उसे छूना मतलब मौत को इनवाइट करना है। हस्तर वो राक्षस जो सोना चाहता था, पर लालच इतना था कि रोटी भी उसके हाथ से फिसल गई। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंसान का लालच। पर विनायक हर बार अपनी मौत से बच के सोने के सिक्के ले आता है। पर एक सवाल, लालच की कोई सीमा होती है या एक ना एक दिन वो इंसान को निगल जाता है?
2: डरा नहीं रहा हूं, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूं।
3: दुनिया में सबसे बड़ा श्राप क्या है? लालच। और तुम्बाड़ शहर ये सबक एक कहानी की तरह नहीं, एक लोरी की तरह सुनाता है। सोचा

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जेकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है
2: अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन एक बारिश भरी रात में उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी। राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं आपकी है, चलो गाओ।
5: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूरी रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: बुला देना मुझे, है अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप में।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जेकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है ना, रो रहा हूं मैं।
2: पर उसके अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन, एक बारिश भरी रात में, उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही,
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी, राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं, आपकी है, चलो गाओ।
5: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूर ही रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: भुला देना मुझे, अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जंग।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: यार एक बात बता, पानी पर GST लग गया है क्या?
2: अरे नहीं यार, पानी तो बिल्कुल फ्री है।
1: तो फिर भी कोई रख क्यों नहीं रहा? अरे भाई, जब ना कोई टैक्स है ना कोई डिलीवरी चार्ज है, तो एक प्याला पानी रखने में कैसा एतराज है?
2: इससे पहले कि ये बेजुबान मोहल्ले का RTI दाखिल करें कि पानी गया कहाँ, उससे पहले एक बर्तन भर दीजिए और बेजुबानों की जान बचा लीजिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इरशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल।
0: बाबा,
1: अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपनी लस्सी तो ही पी, मैं आता हूँ। चली

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: मुझे वीराना पसंद है, समझे?
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, श्राप बनकर नेटफ्लिक्स के हॉरर सेक्शन की तरह हमेशा जिंदा रहती हैं। एक शापित हवेली, एक राज जो मौत से भी ज्यादा भयंकर था, और एक जैस्मिन जो सिर्फ नाम से मासूम थी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से मेकओवर पैकेज ले लिया और बस अब वो सिर्फ लड़की नहीं डायन बन चुकी थी। पर हर बुराई का अंत होता है, पर इस बार श्राप लाइफ टाइम वारंटी के साथ आया था। सालों बाद हवेली एक बार फिर जाग गई और इस बार नए मेहमान की तलाश थी।
3: तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना।
2: वीराना सिर्फ एक जगह नहीं, एक हॉरर फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो आया वो गया नहीं, और जो गया उसका लास्ट सीन अब तक एक्टिव है। अगर कभी किसी वीरान हवेली में फ्री स्टे मिले तो समझ लो पेमेंट तुमसे नहीं, तुम पर होने वाला है।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: हर दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, कुछ एल्युमिनियम के भी होते हैं, और कुछ के पीछे तो मौत लिखी होती है। राहुल और निधि नए घर की तलाश में, पर जो मिला वो एक मनहूस कहानी थी। एक हवेली जो सदियों से बंद थी, और एक दरवाजा जो सालों से बंद था, शायद जाम हो गया था। जब उन्होंने उस दरवाजे को छुआ तो पूरी हवेली जाग गई। दीवारों से सांसें सुनाई देने लगी, दरी पर पैरों के निशान उभरने लगे, और फिर वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर तुमने उन्हें खोला तो हो सकता है अंदर वाले तुम्हें बाहर ही ना आने दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: अगर वो बोल सकती तो शायद कहती, थोड़ा पानी मिलेगा, मगर वो बोलते नहीं, बस लाचार भरी नजरों से हमारी ओर देखते हैं। तो आइए उनकी प्यास हमारी इंसानियत से मिटाएं। गर्मी में बाहर पानी रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी बहुत सुकून देता है।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: ऐसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

0: शुरू हो जा।
1: तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: तुम्हारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: आप तो बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सुनो जरा, चलो करें कुछ मजा।
2: नया घर लेना मतलब नए सपने, नई उम्मीदें और कभी कभी नए मेहमान। एक नया घर लेना लाइफ का बड़ा अचीवमेंट होता है, पर जब घर के साथ एक भूत मुफ्त मिले तो
3: भूतनाथ नहीं, ये मेरा घर है, चलो निकलो यार।
2: शर्मा फैमिली गोवा शिफ्ट होती है और एक हेरिटेज लुक वाला बंगलो रेंट करती है, नाथ विला। भाई नाम ही इतना क्लासी है तो भूत भी वीआईपी होगा। मोहल्ले वाले वॉर्न करते हैं, भाई हॉन्टेड है, पर इंडियन पेरेंट्स को सिर्फ 2 महीने का रेंट दिख रहा होता है। घर में अजीब चीजें होने लगती हैं, टीवी खुद चलना बंद, फ्रिज से आइसक्रीम गायब, मतलब भाई भूत भी फुल सैवेज मूड में है। पर छोटा बंकू भूत से दोस्ती कर लेता है। भूतनाथ अंकल भी सोच रहे होंगे, अरे यार ये डर क्यों नहीं रहा,
4: कान्हा भूत हूँ।
5: कान्हा भूत नहीं होते, अच्छा तो तुम यहाँ पर रहने आए हो।
2: धीरे धीरे पता लगता है कि नाथ साहब ही इस घर के असली मालिक हैं और यहीं अटक गए हैं। ईएमआई का लोन चुकाना पड़ा होता तो पहले ही स्वर्ग सिधार जाते। अब बंकू की मिशन मोड एंट्री होती है, भूत को फ्री करना है। एक तरफ स्कूल का होमवर्क और दूसरी तरफ भूत की मोक्ष यात्रा। बचपन काफी स्ट्रेस में चल रहा था, आखिरकार नाथ अंकल स्वर्ग एक्सप्रेस पकड़ के निकल लेते हैं और घर अब हॉन्टेड नहीं रहा। लेकिन शर्मा जी की टेंशन खत्म नहीं हुई, अब उनको नया टेनेंट ढूंढना है। घर सस्ता मिले तो एक बार चेक कर लो, कहीं घर के साथ भूत मुफ्त ना मिल रहा हो, क्योंकि हर भूत भूतनाथ नहीं होता।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
1: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़ें या ना लड़ें, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

0: के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
0: इसके आगे मैं नहीं बता सकती, इनसे ही पूछ लो।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जंग।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: दोस्ती, प्यार, परिवार और एक डॉग जो लव स्टोरी का असली हीरो निकला। प्रेम एक बिंदास देवर, निशा एक शरारती साली साहिबा, दोनों की नोक झोंक, मस्ती और आंखों ही आंखों

0: पर ये कोई ऑर्डिनरी लव स्टोरी नहीं थी, ये थी संस्कार सिनेमैटिक यूनिवर्स की ओजी फिल्म।
1: हम आपके हैं कौन?
2: ये मौसम का जादू है मितवा।
0: पिक्चर से लंबे गाने, दिल से दोस्ती, भाभी तेरा देवर दीवाना और प्रेम निशा का पहला पहला प्यार, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। पूजा, जो प्रेम के भाई राजेश की पत्नी थी, एक ड्रामेटिक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और फिर होता है संस्कार वर्सेस प्यार का महायुद्ध।
2: मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है।
0: लेकिन राजश्री की फिल्म में ड्रामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश के लिए निशा का रिश्ता फिक्स होने वाला था, पर प्रेम का प्यार और टफी, हाँ वही लेजेंडरी डॉगी, हीरो बनकर बीच में आ जाते हैं। अब सवाल ये था, प्रेम सेक्रीफाइस करेगा या प्यार की होगी जीत? फैमिली ड्यूटी स्ट्रॉन्ग निकलेगी या दिल की सुननी पड़ेगी?
2: आपके
0: प्यार किया तो डरना क्या? एंड एट लास्ट निशा और प्रेम का प्यार जीत जाता है और फिल्म की होती है हैप्पी एंडिंग।

0: आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हेलमेट ही मांग लिया।
1: अब हम स्कूटी कैसे चलाएंगे।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी जिलायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: अनजाने अजनबी।
2: शादी सिर्फ शादी नहीं होती, थोड़ी सी शर्माहट, थोड़ी सी मिठाई और
3: हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार।
2: एक तरफ प्रेम, जो सीधा साधा लड़का जो शादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, और दूसरी तरफ हमारी पूनम, जो एक शर्मीली और सुशील लड़की जो प्यार को एक समर्पण समझती है। में शर्माना, घर वालों का आशीर्वाद और विवाह फिक्स।
4: सहरा सजा के घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे तो जानती हो क्या होगा?
5: क्या?
4: हमारे गली के कई घरों में चूल्हों पे रोटियां जल जाएंगी।
2: राजश्री की पिक्चर में ड्रामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लड़की वाले नर्वस, लड़के वाले ओवर एक्साइटेड, पर जब किस्मत ने कठिन इम्तिहान दिया तब प्रेम ने दिखाया कि असली प्यार सिर्फ सुंदरता से नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाने से होता है।
1: तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है।
2: और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है विवाह मूवी की, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ शादी के मंडप तक ही नहीं, जिंदगी भर साथ चलने का वादा होता है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: अगर वो बोल सकती तो शायद कहती, थोड़ा पानी मिलेगा, मगर वो बोलते नहीं, बस लाचार भरी नजरों से हमारी ओर देखते हैं। तो आइए उनकी प्यास हमारी इंसानियत से मिटाएं। गर्मी में बाहर पानी रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी बहुत सुकून देता है।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
2: प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी इंतजार का नाम भी होता है। सिमरन, सपनों में जीने वाली लड़की।
3: मेरे ख्वाबों में जो आए।
2: राज, मस्ती, मजाक और दिल से जीने वाला आशिक।

0: राज ने घर से रिश्ता जोड़ा, सबका दिल जीता, लेकिन बाऊजी का पत्थर दिल पिघलाना अभी बाकी था। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया।
1: जा सिमरन, जा जा जीने अपनी जिंदगी।
0: इसलिए कहते हैं

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।

0: बोलते रहो। हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
0: बाय।
1: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
0: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: एक वार बोलिया पछी मारा मित्रों, आ मित्रों कदी ना फरे के हालो ने

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, कुछ दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं होती, और कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। वो इंतजार करती हैं वक्त का। एक कहानी मोहब्बत, धोखा और एक आत्मा का इंतकाम। ये कहानी है 1920 की।
2: तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं।
1: अर्जुन सिंह राठौड़ एक आर्किटेक्ट जिसने फैमिली के खिलाफ जाकर लीसा से शादी की और प्यार उन्हें एक वीरान हवेली तक ले आया।
3: इतने खूबसूरत घर को कोई तोड़ना क्यों चाहता है?
1: जो सिर्फ एक हवेली नहीं, एक मनहूस कहानी का गवाह भी थी। उस हवेली में आते ही अजीब हादसे शुरू होने लगे।
4: कौन है?
1: लीसा को अजनबी चेहरे दिखने लगे। हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। एक भयानक साया उसके आसपास मंडराने लगा।
4: इस घर में कुछ है जिसे मैं छू नहीं सकती, पर महसूस जरूर कर सकती हूँ।
1: और फिर लीसा को एक तस्वीर मिलती है गायत्री की, और उसके बाद आता है एक सच। ये कहानी सिर्फ प्यार नहीं, इंतकाम की भी थी।
3: लीसा और कोई नहीं, गायत्री ही है बेटा। वो दूसरा जन्म लेकर पालनपुर आ पहुँची है।
1: वहाँ के प्रीस्ट ने ये चेतावनी भी दी थी कि मोहन कांत की आत्मा वापस आई है लीसा के रूप में। और फिर आती है अमावस की रात। लीसा का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। पर आखिर जीता सिर्फ एक ही, सच्चा प्यार। अर्जुन ने लीसा को आजाद किया और वो आत्मा हमेशा के लिए हवेली की दीवारों में समा गई। मोहब्बत हो या हवेली, पुरानी हो तो संभाल के रखना, और हाँ, अगले जन्म के वादे सोच समझ के करना। क्या पता कौन सीरियसली

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: जीवन का असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ तपती जमीन है, लेकिन सोचिए कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भरकर किसी सुरक्षित जगह रख दो। छोटी सी मेहनत लेकिन किसी के लिए बड़ी राहत। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उनके लिए भी सोचिए जो बोल नहीं सकते।

0: शुरू हो जा।
1: तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।
1: अरे सुनो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: इंसानियत सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, हर जीव के लिए है। क्या कभी सोचा है कि जो पंछी आपकी छत पर आते हैं वे सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी उम्मीद से आते हैं। गर्मी उनके लिए भी उतनी ही कठिन है जितनी हमारे लिए। एक छोटी सी कोशिश, एक मटका या एक बोल पानी भर कर रखिए, शायद आपकी एक कटोरी पानी से किसी की प्यास बुझ सके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: देखो, बॉयफ्रेंड्स ना फिल्मों की तरह होते हैं, कुछ टाइम पास तो कुछ ब्लॉकबस्टर्स।
2: मोहब्बत हो या म्यूजिक, दोनों अधूरे सुरों में भी खूबसूरत लगते हैं, और यही है ए दिल है मुश्किल की कहानी।
3: आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म का हीरो।
2: अयान, एक मस्ती भरा आशिक।
4: जब मैं 2 साल का था, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई।
1: चली गई?
4: भाग गई।
1: मदर तो इंडिया होती है, तुम्हारी मिल्का निकली, भाग गई।
2: जो प्यार को दोस्ती समझता है, जब तक उसका दिल एलिजे के लिए धड़कना शुरू नहीं करता।
5: बिना गुजारा है दिल है मुश्किल।
2: पर एलिजे के लिए दोस्ती का एहसास गहरा है, लेकिन प्यार का नहीं। मोहब्बत के इस सफर में आती है सबा, जो अयान को प्यार का दूसरा रंग दिखाती है, खुद से प्यार करने का।
6: अरे वाह, बड़े वफादार है आप यासू, आपकी इजाजत के बगैर बाहर भी नहीं निकल।
2: लेकिन क्या दिल अपने जज्बात बदल सकता है, या कुछ मोहब्बतें सिर्फ दर्द का गीत बनकर ही जी जाती हैं? क्योंकि कुछ कहानियाँ अंजाम से नहीं, सिर्फ जज्बात से पूरी होती।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
5: हर दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, कुछ एल्युमिनियम के भी होते हैं, और कुछ के पीछे तो मौत लिखी होती है। राहुल और निधि नए घर की तलाश में, पर जो मिला वो एक मनहूस कहानी थी। एक हवेली जो सदियों से बंद थी और एक दरवाजा जो सालों से बंद था, शायद जाम हो गया था। जब उन्होंने उस दरवाजे को छुआ तो पूरी हवेली जाग गई, दीवारों से सांसें सुनाई देने लगी, दरी पर पैरों के निशान उभरने लगे, और फिर वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर तुमने उन्हें खोला तो हो सकता है अंदर वाले तुम्हें बाहर ही ना आने दें।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सोचा वरना हंसता रह जाएगा।
2: कौन है ये?
3: तुम्बाड़ एक कहानी जो सिर्फ डर नहीं, लालच का असली चेहरा दिखाती है। बारिश से भरा एक हॉरर फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें एक खजाना छुपा है, पर उसके साथ एक श्राप भी। विनायक राव एक लालची इंसान जो तुम्बाड़ के पुराने हवेली के खजाने का राज जानता है।
2: समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच।
3: पर वो ये भूल जाता है कि जो चीज देवी ने खुद अपने पेट में लॉक कर दी, उसे छूना मतलब मौत को इनवाइट करना है। हस्तर वो राक्षस जो सोना चाहता था, पर लालच इतना था कि रोटी भी उसके हाथ से फिसल गई। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंसान का लालच। पर विनायक हर बार अपनी मौत से बच के सोने के सिक्के ले आता है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: यार एक बात बता, पानी पर GST लग गया है क्या?
2: अरे नहीं यार, पानी तो बिल्कुल फ्री है।
1: तो फिर भी कोई रख क्यों नहीं रहा? अरे भाई, जब ना कोई टैक्स है ना कोई डिलीवरी चार्ज है, तो एक प्याला पानी रखने में कैसा एतराज है?
2: इससे पहले कि ये बेजुबान मोहल्ले का RTI दाखिल करें कि पानी गया कहाँ, उससे पहले एक बर्तन भर दीजिए और बेजुबानों की जान बचा लीजिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय बाय।
2: कितने गई?

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: जीवन का असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ तपती जमीन है, लेकिन सोचिए कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भरकर किसी सुरक्षित जगह रख दो। छोटी सी मेहनत लेकिन किसी के लिए बड़ी राहत। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उनके लिए भी सोचिए जो बोल नहीं सकते।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: मुझे वीराना पसंद है, समझे?
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, श्राप बनकर नेटफ्लिक्स के हॉरर सेक्शन की तरह हमेशा जिंदा रहती हैं। एक शापित हवेली, एक राज जो मौत से भी ज्यादा भयंकर था, और एक जैस्मिन जो सिर्फ नाम से मासूम थी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से मेकओवर पैकेज ले लिया और बस अब वो सिर्फ लड़की नहीं डायन बन चुकी थी। पर हर बुराई का अंत होता है, पर इस बार श्राप लाइफ टाइम वारंटी के साथ आया था। सालों बाद हवेली एक बार फिर जाग गई और इस बार नए मेहमान की तलाश थी।
3: तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना।
2: वीराना सिर्फ एक जगह नहीं, एक हॉरर फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो आया वो गया नहीं, और जो गया उसका लास्ट सीन अब तक एक्टिव है। अगर कभी किसी वीरान हवेली में फ्री स्टे मिले तो समझ लो पेमेंट तुमसे नहीं, तुम पर होने वाला है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इशार।
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो। इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल।
0: बाबा।
1: अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फूटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपनी लस्सी तो ही पी, मैं आता हूँ।

0: 89.6 FM।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: भी विनायक राव एक लालची इंसान जो तुम्बाड़ की पुराने हवेली के खजाने का राज जानता है।
1: समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच।
0: पर वो ये भूल जाता है कि जो चीज देवी ने खुद अपने पेट में लॉक कर दी, उसे छूना मतलब मौत को इनवाइट करना है। हस्तर वो राक्षस जो सोना चाहता था, पर लालच इतना था कि रोटी भी उसके हाथ से फिसल गई। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंसान का लालच। पर विनायक हर बार अपनी मौत से बच के सोने के सिक्के ले आता है। पर एक सवाल, लालच की कोई सीमा होती है या एक ना एक दिन वो इंसान को निगल जाता है?
1: डरा नहीं रहा हूं, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूं।
0: दुनिया में सबसे बड़ा श्राप क्या है? लालच। और तुम्बाड़ शहर ये सबक एक कहानी की तरह नहीं, एक लोरी की तरह सुनाता है। सोचा।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसे। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जेकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है ना, रो रहा हूं मैं।
2: पर उसके अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन, एक बारिश भरी रात में, उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी, राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं, आपकी है, चलो गाओ।
5: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूर ही रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: बुला देना मुझे, अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: Wheels of Life, Wheels of Hope, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: कभी लीजर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रास्ता रास्ता देखो आपने।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जेकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है ना, रो रहा हूं मैं।
2: पर उसके अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन, एक बारिश भरी रात में, उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी, राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं, आपकी है, चलो गाओ।
5: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूर ही रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: बुला देना मुझे, अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।

0: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
1: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: यार एक बात बता, पानी पर GST लग गया है क्या?
2: अरे नहीं यार, पानी तो बिल्कुल फ्री है।
1: तो फिर भी कोई रख क्यों नहीं रहा? अरे भाई, जब ना कोई टैक्स है ना कोई डिलीवरी चार्ज है, तो एक प्याला पानी रखने में कैसा है?

0: है।
1: इससे पहले कि ये बेजुबान मोहल्ले का आरटीआई दाखिल करें कि पानी गया कहाँ, उससे पहले एक बर्तन भर दीजिए और बेजुबानों की जान बचा लीजिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इशार।
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो। इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल।
0: बाबा।
1: अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फूटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपनी लस्सी तो ही पी, मैं आता हूँ।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: मुझे वीराना पसंद है, समझे।
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, श्राप बनकर नेटफ्लिक्स के हॉरर सेक्शन की तरह हमेशा जिंदा रहती हैं। एक शापित हवेली, एक राज जो मौत से भी ज्यादा भयंकर था, और एक जैस्मिन जो सिर्फ नाम से मासूम थी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से मेकओवर पैकेज ले लिया और बस अब वो सिर्फ लड़की नहीं डायन बन चुकी थी। पर हर बुराई का अंत होता है, पर इस बार श्राप लाइफ टाइम वारंटी के साथ आया था। सालों बाद हवेली एक बार फिर जाग गई और इस बार नए मेहमान की तलाश थी।
3: तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना।
2: वीराना सिर्फ एक जगह नहीं, एक हॉरर फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो आया वो गया नहीं, और जो गया उसका लास्ट सीन अब तक एक्टिव है। अगर कभी किसी वीरान हवेली में फ्री स्टे मिले तो समझ लो पेमेंट तुमसे नहीं, तुम पर होने वाला है।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: हर दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, कुछ एल्युमिनियम के भी होते हैं, और कुछ के पीछे तो मौत लिखी होती है। राहुल और निधि नए घर की तलाश में, पर जो मिला वो एक मनहूस कहानी थी। एक हवेली जो सदियों से बंद थी और एक दरवाजा जो सालों से बंद था, शायद जाम हो गया था। जब उन्होंने उस दरवाजे को छुआ तो पूरी हवेली जाग गई, दीवारों से सांसें सुनाई देने लगी, दरी पर पैरों के निशान उभरने लगे, और फिर वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर तुमने उन्हें खोला तो हो सकता है अंदर वाले तुम्हें बाहर ही ना आने दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: अगर वो बोल सकती तो शायद कहती, थोड़ा पानी मिलेगा, मगर वो बोलते नहीं, बस लाचार भरी नजरों से हमारी ओर देखते हैं। तो आइए उनकी प्यास हमारी इंसानियत से मिटाएं। गर्मी में बाहर पानी रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी बहुत सुकून देता है।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो।

0: शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: तुम्हारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: अब तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सुनो जरा, चलो करे कुछ मजा।
2: नया घर लेना मतलब नए सपने, नई उम्मीदें और कभी कभी नए मेहमान। एक नया घर लेना लाइफ का बड़ा अचीवमेंट होता है, पर जब घर के साथ एक भूत मुफ्त मिले तो।
3: भूतनाथ नहीं, ये मेरा घर है, चलो निकलो यहाँ से।
2: शर्मा फैमिली गोवा शिफ्ट होती है और एक हेरिटेज लुक वाला बंगलो रेंट करती है, नाथ विला। भाई नाम ही इतना क्लासी है तो भूत भी वीआईपी होगा। मोहल्ले वाले वॉर्न करते हैं, भाई हॉन्टेड है, पर इंडियन पेरेंट्स को सिर्फ 2 महीने का रेंट दिख रहा होता है। घर में अजीब चीजें होने लगती हैं, टीवी खुद चलना बंद, फ्रिज से आइसक्रीम गायब। मतलब भाई भूत भी फुल सैवेज मूड में है, पर छोटा बंकू भूत से दोस्ती कर लेता है। भूतनाथ अंकल भी सोच रहे होंगे, अरे यार ये डर क्यों नहीं रहा।
4: कान्हा भूत हूँ।
5: कान्हा भूत नहीं होते? अच्छा, तुम यहाँ पर रहने आए हो?
2: धीरे धीरे पता लगता है कि नाथ साहब ही इस घर के असली मालिक हैं और यहीं अटक गए हैं। ईएमआई का लोन चुकाना पड़ा होता तो पहले ही स्वर्ग सिधार जाते। अब बंकू की मिशन मोड एंट्री होती है, भूत को फ्री करना है। एक तरफ स्कूल का होमवर्क और दूसरी तरफ भूत की मोक्ष यात्रा। बचपन काफी स्ट्रेस में चल रहा था, आखिरकार नाथ अंकल स्वर्ग एक्सप्रेस पकड़ के निकल लेते हैं और घर अब हॉन्टेड नहीं रहा। लेकिन शर्मा जी की टेंशन खत्म नहीं हुई, अब उनको नया टेनेंट ढूंढना है। घर सस्ता मिले तो एक बार चेक कर लो, कहीं घर के साथ भूत मुफ्त ना मिल रहा हो, क्योंकि हर भूत भूतनाथ नहीं होता।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
1: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: दोस्ती, प्यार, परिवार और एक डॉग जो लव स्टोरी का असली हीरो निकला। प्रेम एक बिंदास देवर, निशा एक शरारती साली साहिबा, दोनों की नोक झोंक, मस्ती और आंखों ही आंखों में

0: कोई ऑर्डिनरी लव स्टोरी नहीं थी, ये थी संस्कार सिनेमैटिक यूनिवर्स की ओजी फिल्म।
1: हम आपके हैं कौन?
2: ये मौसम का जादू है मितवा।
0: पिक्चर से लंबे गाने, दिल से दोस्ती, भाभी तेरा देवर दीवाना और प्रेम निशा का पहला पहला प्यार, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। पूजा, जो प्रेम के भाई राजेश की पत्नी थी, एक ड्रामेटिक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और फिर होता है संस्कार वर्सेस प्यार का महायुद्ध।
2: मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है।
0: लेकिन राज रे की फिल्म में ड्रामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश के लिए निशा का रिश्ता फिक्स होने वाला था, पर प्रेम का प्यार और टफी, हाँ वही लेजेंडरी डॉगी, हीरो बनकर बीच में आ जाते हैं। अब सवाल ये था, प्रेम सेक्रीफाइस करेगा या प्यार की होगी जीत? फैमिली ड्यूटी स्ट्रॉन्ग निकलेगी या दिल की सुननी पड़ेगी?
2: आपके
0: प्यार किया तो डरना क्या? एंड एट लास्ट निशा और प्रेम का प्यार जीत जाता है और फिल्म की होती है हैप्पी एंडिंग।

0: आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हेलमेट ही मांग लिया।
1: अब हम स्कूटी कैसे चलाएंगे।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है,
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।